हर नई सुबह खुली हवा की तरह नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। बीती बातों को पीछे छोड़कर आज को उत्साह और विश्वास के साथ जीना ही सफलता का मार्ग है।

सूरज की पहली किरण यह संदेश देती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आता है।

ईश्वर की भक्ति, अच्छी सोच और निरंतर कर्म, यही जीवन को सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाले तीन अमूल्य सूत्र हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपके एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून 2026 सुबह के 5:53 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको जानकारी दे दें, आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चौवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्रमानस गान।

7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। आठ 8:45 पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर का। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

3:10 का समय रहेगा कार्यक्रम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखला

कलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों कहते हैं कि कलयुग जोग न जग्गे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। अर्थात कलयुग में न योग है, न यज्ञ है और न ज्ञान है। कलयुग में केवल राम के गुणों का गान ही एक आधार है। भगवान राम का जीवन चरित्र हमें प्रेम, त्याग, धर्म और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करता है। और जब जानकी नाथ अंग संग हो तो फिर कौन बिगाड़ करे।

साथियों, जब भक्त और भक्ति की बात होती है तो अनन्य भक्तों का जिक्र होता है और एक नाम आता है सूरदास जी का, जो सबसे अलग दिखाई देता है क्योंकि उनकी भक्ति में वात्सल्य, सखा भाव और माधुर्य का एक अनूठा संगम है जो ईश्वर को मानव रूप में उनके समीप लाता है। आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। आइए सुनते हैं उनकी एक भावपूर्ण और भक्तिमय रचना।

और कर्म सब कर्म है भक्ति कर्म नेह कर्म, कहें कबीर पुकार के भक्ति करो तजी भर्म। लेकिन देखा जाए तो भक्ति दरअसल कोई कार्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और इस वक्त हम और आप मिलकर एक साथ कर रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के सुमन अर्पण उस परम शक्ति के प्रति। 6:34 और 47 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

आयेश सुमिरन को इसी प्रकार जारी रखते हैं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर. और अब सुनते हैं रामचरितमानस का ये सुंदर जीवनदायिनी प्राणदायिनी राम नाम गुणगान, रामचरितमानस का ये सुंदर संगीतमय पाठ.

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना इसे बालकांड से लिया गया था और इसी के साथ अब कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब जानेंगे देश और दुनिया का हाल संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के जरिए। और उसके बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर मिलूंगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपांत्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic, deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovering systems, and unauthorized access to financial and digital services. The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Voltunen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusebe on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland. Dr. Jaishankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. The Enforcement Directorate ED has arrested Naresh Kumar, the then superintendent in the Office of Director Development and Panchayat Haryana, in connection with the ongoing investigation in IDFC bank fraud case. He was arrested under the provisions

कहते हैं कि रुत कोई भी हो, अगर आपके अपने आपके आसपास आपके साथ हों तो फिर आप हर रुत को, हर मौसम को एंजॉय करते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही तो खूबसूरती है रिश्तों की। और हमारा आपका रिश्ता तो वैसे ही बहुत स्पेशल है, इसलिए तो हम हर रोज़ आपसे मिलने चले आते हैं और लेकर आते हैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने होते हैं जो आपके साथ हम यहाँ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं गोल्ड स्टूडियो के ज़रिए। और आज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आपको जल्दी से मैं ये बता दूं जो आज आपसे मिलने आएंगे। 8:45 पर आपके साथ रहूंगी मैं म्यूज़िकल दिल्लगी के पहले सेगमेंट में, और 9:10 पर म्यूज़िकल दिल्लगी के दूसरे सेगमेंट में होंगी रेखा आपके साथ, जो बात करेंगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, और 11:10 पर तस्वीर में आज हम आपको तमिलनाडु में यरकौड की सैर पर लेकर चलेंगे। 12:10 पर एक कदम बुजुर्गों की ओर, 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज अभिनेत्री श्यामा के बारे में बात करेंगे। 2:30-3 दोपहर में आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत के साथ, जिसमें आज का विषय होगा प्याज का समुचित भंडारण और खरीफ प्याज की तैयारी, और इसमें शामिल होंगे हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर पीके गुप्ता जो निदेशक हैं NHRDF नई दिल्ली में। 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा, रात 8:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मधुरिमा, रात 10:30 हरसिंगार, और रात 11:45 पर गीत मेरे मन मीत। और फिलहाल लता जी और सुबीर सेन की आवाज़ में खूबसूरत गीत के साथ मैं अभी आपको कहती हूँ अलविदा, लेकिन फिर मिलूंगी आपसे 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। सो कीप एंजॉइंग द गोल्डन म्यूजिक, और इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। आपकी ये रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आपसे ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड।

0: बादलों से उतली झमाझम बौछार से, अंबर से धरती पर बरसते प्यार से, प्रकृति के हरियालवी श्रृंगार से, गुदगुदाती पवन के संग नशीली फुहार से, कौन है जिसका न मन झूम जाए। नदियां व झील सरोवर लगे भरने, नया जीवन पा उमंग उठे झरने, झूम उठे सब वृक्ष लता, नहा धोकर पक्षियों के दल लगे गुंजन करने, प्रकृति का हर ओर छोर आनंद मग्न, नए अंकुर खेतों का श्रृंगार करें, कृषक मन में नई उमंगें भरें, मौसम की अनुकूलताओं के वरदानों से मनोकामनाओं की पूर्ति की फसलें लहरें, वर्षा की रानी सौगातों से बिखरा चहूं ओर नया जीवन नया सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक सुहावनी और हल्की भीगी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड हेलो देयर ऑल यू लवली पीपल ट्यून्ड इन टू अस दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। गेट रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो फॉर स्टार्टर्स वी हैव सम न्यूज़ हेडलाइंस। मुकेश,
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: Center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes and account recovery systems. We have more from our correspondent.
3: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any

0: suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलाव भी ला रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणाम को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने दोहराया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रहित से प्रेरित होते हैं और क्रय सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं।
2: US President Donald Trump says he has called off new military strikes on Iran hours after threatening to escalate the war by seizing control of country's oil industry. In a social media post, Mr. Trump said he made the move based on the fact that discussions with Iran have been brought to the highest level of Iranian leadership and approved. The announcement came after 2 days of back-and-forth attacks between the US and Iran had threatened to pushed the West Asia region closer to the resumption of a full-scale war. Trump, on multiple occasions over the last several weeks, has claimed that the warring parties have been on the cusp of a deal without anything coming to fruition. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on 5th of next month at the iconic Lord's Cricket Ground. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian women's team will be looking to create history as they aim for their first T20 World Cup title. For the first time in the tournament's history, 12 teams will compete with 33 matches scheduled across 7 venues, making it the biggest edition of the ICC Women's T20 World Cup to date.
1: उधर मेक्सिको सिटी में कल रात फीफा विश्व कप का भव्य समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। एस्टेका स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में सह मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी। मेक्सिको के लिए जूलियन क्नोन्स ने 9वें मिनट में पहला गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। बाद में राउल जिमनेज ने 67वें मिनट में दूसरा गोल कर मेक्सिको की बढ़त को 2-0 में तब्दील कर दिया। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए, जिससे मेक्सिको के 10 और दक्षिण अफ्रीका के 9 खिलाड़ी मैदान पर रह गए। ग्रुप ए का ये मुकाबला इतिहास के सबसे बड़े विश्व कप की शुरुआत है, जिसमें 48 टीम शामिल हो रही हैं। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में 1 महीने तक चलने वाले इस फुटबॉल विश्व कप में 104 मैच खेले जाने हैं। श्रोताओं, रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। इस कड़ी में पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की।
2: Yes, Mukesh, starting with news from Chennai. The 16-kilometer Velachery Tambaram High Road is set to be renamed after Major Mukund Varadarajan, the Indian Army officer who was killed in action and posthumously awarded the Ashok Chakra, the country's highest peacetime gallantry honor. The Tambaram Corporation Council approved a resolution to name the arterial road Major Mukund Varadarajan in recognition of his sacrifice. The proposal was taken up following the approval from the municipal administration and Water Supply Department. We have another news from Chennai. The Tamil Nadu School Education and Information and Public Relations Minister Raj Mohan said that all teachers' vacancies in the government schools will be filled in the state. He noted that in line with Chief Minister C. Joseph Vijay's vision, the government is continuously working to ensure world-class education for government school students. Along with upgrading school infrastructure, the efforts to establish digital technology facilities and modern labs are underway across the state. He appealed to the public not to believe in fake news in social media and baseless rumors surrounding the education department. He warned that strict legal action would be taken against those spreading rumors that gamble with the future of students. getting to Bengaluru now, infrastructure

0: Development Minister M.B. Patil has requested the centre to include the Bengaluru-Shivamogga air route in the upcoming Udaan bidding process to restore suspended flight services. In a letter to the Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, Patil said the route is vital for the economic, tourism, agricultural and industrial growth of Malnad and Central Karnataka districts. Flights between Bengaluru and Shivamogga, operated by Indigo since Shivamogga Airport opened in February 2023, were suspended due to financial losses. Patil noted that the lack of direct connectivity has inconvenienced passengers and affected access to domestic and international destinations. He urged the centre to support the route through the viability gap funding BGF mechanism under Udaan. Patil also highlighted that work on night landing facilities at Shivamogga Airport is progressing rapidly and that the airport already has the necessary infrastructure to resume operations. We have another news from Bengaluru. Greater Bengaluru Authority GBA Chief Commissioner Maheshwar Rao has directed officials to integrate all ongoing and proposed development works across the GBA jurisdiction through a common GIS platform to improve coordination among departments. Chairing a review meeting, Rao instructed City Corporations, BWSSB, BESCOM, KPTCL, BMRCL, KRIDE and other agencies to submit their action plans for GIS mapping. He also directed that contract bills be processed only after project details are uploaded to the platform. The meeting also reviewed key infrastructure projects, including finalization of the Hebbal Junction design, measures to prevent monsoon waterlogging, maintenance of lifts on foot over bridges, completion of the Yelahanka Old Town Railway underpass by November, and improvement works under the Suraksha 75 project. Going to Hyderabad now, the Ministry of Coal successfully concluded a major roadshow yesterday to accelerate domestic coal and lignite gasification projects. Chief Guest and Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy highlighted that India possesses nearly 400 billion tons of coal reserves, the world's fifth largest. He described gasification as a transformational opportunity for the country's energy and industrial future. Minister Reddy emphasized that despite these vast resources, India remains heavily dependent on importing methanol, ammonia and essential fertilizers. He stated that gasification offers a strategic pathway to convert domestic coal into high-value products, thereby reducing foreign exchange outflow and boosting economic resilience. He also announced that the draft request for proposal is open for public feedback to ensure an investor-friendly framework under the government's 46,000 crore rupees promotion scheme. And Mukesh, over to you now for the rest of the news.
1: बिल्कुल सुभद्रा, अब बात करते हैं दिल्ली से जुड़े समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच के तहत दिल्ली अपना अनुभव, कार्यपद्धतियां और सामूहिक विचार साझा करने में सक्षम रही और विकसित भारत की भावना को भी हमने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्यों ने भी अपने अनुभव और कार्यपद्धतियां साझा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सुनते हैं हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
2: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के साथ सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं।
1: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में राज्य परिवहन विभाग की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सरनाईक ने कहा

0: कि भत्ता 53% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते में भविष्य में होने वाली कोई भी वृद्धि तुरंत निगम के कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। श्री सरनाइक ने कहा कि सड़क परिवहन निगम बेड़े में अब तक लगभग 3000 नई बसें जोड़ी जा चुकी हैं और वर्ष 2035 तक पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कृषि मित्र भर्ती संबंधी फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही इसके लिए कोई भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती संबंधी कोई भी घोषणा केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जारी की जाएगी। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो राज्य सरकार ने कोलकाता में 20 जून को पूरे राज्य भर में पश्चिम बंगाल दिवस मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी शिक्षण संस्थानों और जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। तारकेश्वर को मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि यहाँ पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के इतिहास और बंगाल के विभाजन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सुभद्रा के साथ। और अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। इधर दिल्ली में कल शाम से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी कहीं कहीं हुई है। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कविता से ही जिक्र किया था कि बारिश देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रही है और इसी के साथ दिल्ली में भी ये दौर जारी रहा। शहर में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो आज 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। शहर में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर बात की जाए कलकत्ता की तो आज वहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश और आंधी आने की संभावना है। उधर न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
1: Yes, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius, the maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees Celsius and a maximum of 38 degrees Celsius. So we'll wait for the rain, and meanwhile there is a very important, it's a day today is a very important, right? Gee. This is in regard to children. John F. Kennedy once said, children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. Bilkul. Indeed, the little children, they hold the future in their little hands. So in order to make people understand and create awareness, the International Labour Organization of the United Nations observes the day, that is June 12, as the World Day Against Child Labour, bringing together government agencies, local authorities and international workers to raise awareness of the plight of child laborers world over. So, Mukesh, this year the World Against Child Labour's theme is Red Card to Child Labour, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. So, friends, the campaign calls for stronger action on quality education, social protection, decent work, stronger laws and enforcement, and other measures that can eradicate the roots of child labour.
0: Ji, bilkul.
1: And Mukesh, I found this catchy electropop nursery rhyme that reminds us that every child deserves the right to play, learn, dream and grow free from exploitation and unfair work. The lyrics go like this: I want to love, I want to play, go to school and draw all day, no big jobs, no heavy bags, let me be kind, hooray, sing and dance and smile today. Every child needs love and care, we all matter everywhere. A powerful child labor

0: जी श्रोताओं, बिल्कुल जैसा कि अभी आप ये अंग्रेजी की कविता सुन रहे थे, कुछ इसी कड़ी में अगर हम बात करें हिंदी में भी, तो बच्चों के लिए क्या खूबसूरत लिखा गया है कि जहां होनी थी बेफिक्री सी जिंदगी, वहां ठानी कमाने को अनमोल रोटी, जहां एक एक पल बिताना था खेल में, वहां झोंक दिया बचपन काम की व्यस्तता में, जिन हाथों में कलम थी पकड़ानी, वहां इन्होंने पकड़ा दी जीवन की अनगिनत परेशानी, जहां दुलार के स्वर पड़ने थे कानों में, वहां हर ओर थी डांट डपट की पुकारें, जहां बालपन में करनी थी मासूम गलतियां, वहां सुनी अनजानों की कड़वी बोलियां, जहां अनगिनत स्वप्न सजाने थे आंखों में, वहां दिखा मुश्किलों का सैलाब रात के अंधेरों में, कर्म जो इन नन्हे हाथों से करवाए, वो दूर खड़ा क्यों मुस्काए, नहीं चाहिए इन नन्हे हाथों की कमाई, जो छीन लेती है बचपन की परछाई, छोटे से बचपन के ये कुछ सुनहरे पल, जी लेने दो इन्हें मस्ती में निश्चल, जी लेने दो इन्हें मस्ती में निश्चल। तो कुछ इसी तरह से इस साल भी बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस कड़ी में अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी बार बार पिछले कुछ अपने भाषणों में बच्चों की, जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है या बच्चों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उनके उन्मूलन का बहुत ही व्यापकता से जिक्र किया है। तो हमें भी उन बच्चों से इस तरह के कामों को नहीं करवाना चाहिए, और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बालपन की भावना उनके हृदय में शेष रहने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।
1: Yes, let the children play and now let's get to the history of the day. 1550, King Gustav I of Sweden founded the city of Helsinki. The city, which is currently the capital of Finland, was part of Sweden at that time. And 1665 this day, New Amsterdam legally becomes an English colony, renamed New York after English Duke of York. And 1817, the earliest form of bicycle, the dandy horse, was driven by inventor Carl von Dries. And 1898 this day, Philippines declared its independence from Spain. And 1903, Niagara Falls, Ontario, was incorporated as a city. And also today marks the Independence Day in Philippines and Russia. And what about you, Mukesh? Anything else you have?
0: जी बिल्कुल, वर्ष 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने पहली बार आज ही की तारीख को उड़ान भरी थी। इसके बाद वर्ष 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की वार्ता भी आज ही की तारीख को शुरू हुई थी। इसके 7 बरस बाद यानी कि वर्ष 2008 में 10वें ओसियाना सिनेफेन फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को पुरस्कृत किया गया था।
1: And 2011, scientists published the discovery of what may be the oldest artwork in the Americas, an engraving of an Ice Age mammoth on a fossil bone likely at least 13,000 years old.
0: और 2016 में सायना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। अब बात करते हैं उन जानी मानी हस्तियों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी की। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना की। अब तक उनकी 40 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।
1: And we are going back to the year 1843. Our birth anniversary tributes go out to Sir David Gill, a Scottish astronomer known for measuring astronomical distances. And Hollywood legend Gregory Peck left us this day in the year 2003. From his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audience around the world the quintessential Hollywood leading man, tall, dark and handsome looks, complemented by an overwhelming sense of moral and physical strength. Peck received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning with his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962. And today is the birthday of Metro Man E. Sridharan, a retired officer of the Indian Engineering Service and advisor to several metro projects in India. Besides this, he is a member of the United Nations High-Level Advisory Group on Sustainable Transport. And of course, he has received numerous national international awards for his work.
0: श्रोताओं, भी हमने बात की थी इससे कुछ पहले सी नारायण रेड्डी की, तो उन्होंने फिल्मों में भी काफ़ी नाम कमाया। 1962 में उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया। पहली फिल्म मिली उन्हें गुलबे कावली का था। इस फिल्म के साथ वो मशहूर हो गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे की। वे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक थे। वे दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। पीएल देश पांडे को पुल देश पांडे के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, महाराष्ट्र भूषण, कालिदास आदि अनेकों सम्मानों से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म कुबेर का ये मराठी गीत।

आज श्रोताओं जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजुबाई खांडे की। उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में हिस्सा बनने का मौका मिला था। आइए सुनते हैं उनकी गायकी का ये अंश।

0: छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला है। इन्हें सबसे पहले रत्नपुर मेले में गायन का मौका मिला। इसके बाद मध्य प्रदेश आदिवासी लोक सेवा कला परिषद ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें 1986-87 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव में गाने का मौका दिया। और श्रोताओं, आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। हिंदी की वो ऐसी पहली लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है, और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार

0: साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: To find common ground.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
5: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ, हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
4: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार, लोकसत्ता का शीर्षक है दिल्ली।

0: U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाज़ाराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैनुल अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर ज़ोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाक़े में मरकज़ ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
2: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निज़ाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज़ की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिकार से।
3: मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखा दही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने टेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाएं और सारफीन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर ये

0: कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मतनव सप्लाई निज़ाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
2: पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नज़रिया साज़ क़यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के ज़रिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की समत सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जुरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकदम के उसूल को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के 2 इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात। इसके अलावा علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان

0: शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदीथुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदाम के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरत का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में बेशरत हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेज़बानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
0: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजिमुल उमूर को तलब किया। ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में TMC के 4 राज्यसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں۔ برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब, दिल और जीवन दोनों शायराना लग सकते हैं खुद ब खुद जब हम अपने भोजन में कैलोरी इनटेक को कम करते हैं। तो रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बढ़ती उम्र के साथ कई रोग जब हमें घेरने लगते हैं तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हम सेल्स की उम्र को बढ़ने में रोकने तक कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, जिससे एजिंग प्रोसेस को भी थोड़ा सा धीमा करने में मदद मिलती है, जो एक्चुअली स्पीकिंग हम सभी की चाहत होती है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो फिर उम्र कोई भी हो, जिंदगी में अगर खुशी और संतुष्टि का भाव हो तो वही सबसे बेहतर समय और उम्र होती है। 8:50 पर ये है म्यूजिकल दिल्ली की, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

8:55 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और डिजिटल होना हम सबको पसंद भी है और आज की रियलिटी भी है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं और डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी में अब CISF भी लग गया है, जो तैयार करने जा रहा है करीब 5,000 साइबर कमांडोज, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो भविष्य में आने वाले डिजिटल खतरों और चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना कर सके। इसके लिए खास तरह का एक कैंप शुरू करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उनको नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर खतरों की पहचान करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और घटना पर प्रतिक्रिया और कानूनी ढांचे जैसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं उसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है। तो फिर कोशिश तो देखिए हर जगह जारी है और कोशिशें ही रंग लाती हैं, तभी तो ये कोशिश है गृह मंत्रालय की, जिसके तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल में वो अपना सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही योगदान हम भी दे सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में जिनसे हम जुड़े रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब सोचना हमें है, आपको है कि हम किस तरह अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने साथ साथ समाज के भी हम कुछ काम आ सकें। फिलहाल इस पॉजिटिव नोट के साथ म्यूजिकल दिल्ली के इस पहले सेगमेंट से मुझे लेनी होगी आपसे विदा, क्योंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि इसके बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्ली का सेकेंड सेगमेंट आपके साथ रहेगा और रहेंगी रेखा। तो आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी असर होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुड लिगर आर्टेगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए ये अचानक बदलाव आया है। श्री ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि नाजुक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सवेरे एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सवेरे करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचा लिया गया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. In a significant development, Centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment. It will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
1: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे.
2: Centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deep fake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Kerala and Mahe. Places over northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, interior Karnataka, Jharkhand, Odisha, Tamil Nadu, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim are expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. IMD also predicted moderate rainfall, thunderstorms and lightning over many places of Delhi and NCR today. Similar weather conditions are likely to persist today over Haryana, Chandigarh, Punjab, parts of Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final set to take place on 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create

दोस्तों कहते हैं रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। एक साथ बाल्टी भर पानी दे दो या 10 दिन पानी मत दो, दोनों ही हालातों में पौधे का बर्बाद होना तय है। तो फिर अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को सींचते रहिए हर दिन थोड़े थोड़े प्यार से, फिर देखिएगा कैसे खिले खिले रहेंगे ये सब। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। 9:11 और 31 सेकंड हो गए हैं और ये सफर है म्यूजिकल दिल लगी का, तो चलिए शुरू करते हैं म्यूजिकल दिल लगी।

दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने देश के करोड़ों घरों तक राहत पहुंचाई है। नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत सरकार देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने बिल्कुल मुफ्त राशन दे रही है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले हर परिवार को हर महीने गेहूं और चावल बिना किसी पैसे के मिल रहा है। अच्छी खबर ये है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए यानी 2028 तक बढ़ा दिया है। मतलब अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों की थाली में मुफ्त अनाज पहुंचता रहेगा। इस योजना की एक और खास बात है वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन देश के किसी भी कोने में हो अपने हिस्से का मुफ्त राशन ले सकते हैं। अब काम के लिए शहर बदलने पर राशन कार्ड की चिंता भी नहीं होगी, और अगर आप किसी और शहर में हैं, परिवार किसी और शहर में है, तो आप आधा राशन इधर और आधा राशन उधर भी ले सकते हैं। आपको याद होगा कोरोना के मुश्किल वक्त में इस योजना ने कैसे लोगों को सहारा दिया था। तब फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए का खास बीमा कवर दिया गया था। साथ ही महिला जनधन खाता धारकों को हर महीने सीधी आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई थी। तो दोस्तों यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सिर्फ मुफ्त अनाज नहीं है, ये देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर इसका लाभ जरूर उठाइए, और अगर आपके पास कोई आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस योजना से लाभ मिल सकता है तो उसे इसके बारे में जरूर बताइए। फिलहाल तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, पर अभी एक गीत एंजॉय कीजिए, उसके बाद बताऊंगी और भी काम की बातें।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
5: वेलकम बैक। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 9:26 और 53 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। चल रही है म्यूजिकल दिल लगी, बिना म्यूजिक के तो अधूरी है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत किशोर दा और आशा जी की आवाज में।

आज है 12 जून और ये दिन पूरी दुनिया में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और आज हम जो दिन मना रहे हैं उसके थीम की अगर मैं बात करूं तो रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यानी इस विषय की अगर मैं बात करूं तो बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। इसका मतलब साफ है, बच्चों के हाथ में औजार नहीं, किताब और खिलौने होने चाहिए और उनके माता पिता के पास इतना सम्मानजनक काम होना चाहिए कि पेट भरने के लिए बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। इस साल के अभियान की तीन बड़ी बातों की अगर मैं बात करूं तो ये अभियान तीन बड़ी बातों पर जोर दे रहा है। पहली बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, क्लास में बैठकर पढ़ना उसका हक है, कारखानों में काम करना नहीं। हमें ये पक्का करना है कि कोई बच्चा मजदूरी पर ना जाए, काम पर ना जाए और उस पर कोई ऐसी मजबूरी ना हो जिसकी वजह से उसे कोई काम करना पड़े। दूसरी बात, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। जब माता पिता को सही वेतन और स्थिर रोजगार मिलेगा तभी वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। गरीबी ही बाल श्रम की सबसे बड़ी वजह है और इस जड़ पर वार करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, मजबूत सुरक्षा। इसके लिए वैश्विक स्तर पर योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिनका मकसद है श्रम कानूनों को और सख्त बनाना, कंपनियों की जवाबदेही तय करना और कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देना ताकि कोई भी परिवार मजबूरी में अपने बच्चे का बचपन ना बेचे। दोस्तों, बाल श्रम सिर्फ एक बच्चे का बचपन नहीं छीनता, वो पूरे देश का भविष्य कमजोर करता है। अगर आप इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। कहाँ जाना है आपको और कैसे इन्वॉल्व होना है इसके साथ बता दूं एक बार फिर से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इन पेजेस पर जाइए और जुड़ जाइए इस अभियान के साथ। आइए इस 12 जून हम सब मिलकर बाल श्रम को लाल कार्ड दिखाएं, क्योंकि मैदान में खेलने की उम्र में किसी बच्चे को काम की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। यही तो है ना हमारा उद्देश्य आज के दिन खास तौर पर। वेल, बातें और भी हैं, करूंगी जरूर, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत के बाद फिर और भी कुछ काम की बातें जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आंखों की अगर बात करें तो वो किताब की तरह होती हैं, जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देती हैं। इन्हीं आंखों से हम दुनिया के रंग, अपनों की मुस्कान और सपनों की उड़ान देखते हैं। पर क्या हम इनकी उतनी ही फिक्र भी करते हैं? आज भागदौड़ भरी जिंदगी में और स्क्रीन की दुनिया में हमारी आंखें सबसे ज्यादा थकती हैं। तो चलिए कुछ आसान सी आदतें, कुछ आसान से टिप्स आपको देती हूँ। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और ये वो सारे टिप्स हैं जो आपकी आंखों को दुरुस्त रखेंगे, बेस्ट रखेंगे, अच्छा रखेंगे। इसे 20-20-20 नियम कहते हैं, यानी 20-20-20 का जो ये नियम है। दिन भर में खूब पानी पिए ताकि आंखें सूखी ना रहें। खाने में गाजर, पालक, पपीता, आंवला और बादाम को शामिल करें। इनमें विटामिन ए और ओमेगा 3 होता है, जो नजर को तेज करता है। धूप में निकलें तो यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनें। मोबाइल और लैपटॉप कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखें। आंखों को बार बार मलने से बचें और रोज 7-8 घंटे की पूरी नींद लें। और सबसे जरूरी बात, साल में एक बार आंखों की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि नजर का ये अनमोल तोहफा दोबारा नहीं मिलता। अपनी आंखों से प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें ही तो हैं जो इतने खूबसूरत सपने सजाती हैं, इतने खूबसूरत रिश्तों को देखती हैं, दोस्तों को देखती हैं और इतनी खूबसूरत प्रकृति को आप तक पहुंचाती हैं, आपसे जोड़ती हैं, है ना? तो चलिए फिलहाल एक गीत और उसके बाद बातें और भी हैं। मेरा साया फिल्म, लता जी की आवाज़।

दोस्तों, सूरज दादा इन दिनों फुल फॉर्म में है, आग बरसा रहे हैं। आज थोड़ी हवा ठंडी है, कल रात बारिश हुई, लेकिन अगर धूप तेज होती है तो फिर इतनी तेज होती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और गर्मी से हम तड़प उठते हैं। ऐसे में अगर हमने सेहत की ढाल नहीं पकड़ी तो गर्मी हमें चारों खाने चित कर सकती है। तो सुनिए, गर्मी को मात देने का देसी फॉर्मूला बिल्कुल मुफ्त में, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा और इसे जरूर खुद पर अप्लाई भी करिएगा। पहली बात, पानी से यारी पक्की कर लीजिए। लू दिमाग का पानी सुखा देती है, उससे पहले आप गटाकट पी जाइए। सादा पानी, नींबू, शिकंजी, छाछ, बेल का शरबत, नारियल पानी, जो मिले बस घटक लीजिए। बॉडी हाइड्रेटेड तो गर्मी दूर रहती है। और अगर मैं बात करूं पेट को कूल रखने की, तो इसके लिए आपको समोसे कचौड़ी को बाय बाय बोलना होगा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और दही को हेलो हाई करना होगा। ये एसी हैं आपके पेट के, और अगर आप इन्हें खाते हैं तो सचमुच आपकी सेहत बहुत ही दुरुस्त रहती है और आपको गर्मी में राहत भी मिलती है। फैशन नहीं, प्रोटेक्शन पहनिए। टाइट काले कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा लगने की वजह बन सकते हैं, तो इन्हें रखिए साइड में। सूती ढीले और सफेद कपड़े गर्मी के हीरो होते हैं। सिर पर गमछा या कैप, आंखों पर चश्मा। दोपहर 12 से 3 बजे तक घर में रुके रहिए, कोशिश करिए कि बाहर ना निकलिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहिए, लेकिन धूप में मत निकलिए। यही सयानेपन की निशानी है, और अगर आप ये सब अपनाते हैं तो सचमुच आप गर्मी से बच सकते हैं। और एक और बात, दादी की माँ के नुस्खे आपको याद हैं? जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादी हमें बहुत सारी चीज़ें कहा करती थी, बताया करती थी। उन्हें भी थोड़ा बहुत आजमा लेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। जेब में हो सके तो थोड़ा सा प्याज रख लीजिए, लू पास नहीं फटकेगी। घर से निकलो तो कच्चे आम का पना पीकर निकलो, लू बोलेगी बाय बाय। दोस्तों, गर्मी से डरिए मत, बस थोड़ी अक्ल लगाइए, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए इन चीज़ों का, पानी पीजिए, कूल रहिए, और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ठंडा दिमाग और ठंडा शरीर ही गर्मी का असली जवाब है। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो फिर गर्मी आपको परेशान नहीं करने वाली है। फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ, उसके बाद काम की बातें तो मैं बताती ही रहूँगी। येसुदास और हेमलता जी की आवाज़ में चित्तौड़ फिल्म से प्यारा सा गीत।

मैं नहीं बुला रही हूँ चाय पर, लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में सुधा आंटी राधा आंटी फिल्म की प्रस्तुति होने वाली है। अगर आप फ्री हों और इस जगह के आसपास हों तो ज़रूर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोक नृत्य और संगीत का आयोजन भी आज शाम 6 बजे से है, तो अगर आप इसमें भी रुचि रखते हैं तो पहुँच जाइए इंडिया हैबिटेट सेंटर शाम 6 बजे। तो भाई खाली वक्त है तो उसे इधर उधर मत गंवाइए, गर्मी का मौसम है, बाहर मत जाइए, लेकिन यहाँ पर जाकर आप इन दोनों आयोजनों का आनंद ले सकते हैं। ना कोई पैसा लगना है, ना ही कोई टेंशन होना है, गर्मी से भी बचे रहेंगे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वेल, फिलहाल एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि गीतों का सिलसिला तो चलता रहना चाहिए, है ना।

अब तो इस सफर से जाने का हो गया है टाइम, क्या करें, क्योंकि भाई टाइम जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, हमारे रोके कहाँ रुकता है। 9:58:54 हो चुके हैं, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि शाम 5:10 पर, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो आप सुन सकेंगे पानी पर लिखी कहानी। और आज की कहानी होगी आवाजों के साए, स्वर और आलेख मंजू बत्रा का, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। जरूर सुनेगा शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी। और मैं रेखा अब आपसे फिर से मिलूंगी, कब पता है ना आपको, 10:30 लेकर दिल का मेल बॉक्स। लेकिन दिल का मेल बॉक्स में मिलने से पहले आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, बहुत कुछ है जो आप सुन सकते हैं। और मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी 10:30 लेकर दिल का मेल बॉक्स। जुड़िएगा जरूर और लिख भेजिएगा हमें आपकी पसंद, कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल सुनिए समाचार, मैं चलती हूँ, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: का कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दिशा स्कीमच्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदेविषयक मदतीसाठी टेली लॉच्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबरवर तसेच www.tele-law.in या वेबसाईटवर माहिती मिळवू शकता.
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़. इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में. सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना

0: भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बाळा, मी काल माझ्या पुतण्याच्या घरी जाऊन आलो, मी तर पाहून थक्कच झालो। ते लोक दिवस भर एसी चालवतात, रोज वॉशिंग मशीन लावतात, घरात दोन दोन फ्रीज आहेत, पण त्यांचं वीज बिल किती येतं माहितीये? 0। मी विचारलं तर पुतण्या म्हणाला, काका सगळी वर्षाची कृपा आहे। म्हणजे सोलर पॅनलची। मी विचार केला, आता बसवायलाच पाहिजे।
4: पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना

0: सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे,
4: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है

हलू हलू उघटे डोले पाही तो कबीर पाही तो कबीर विनुनिया चेला गेला सखार भू सखार भू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NETUG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief Stefan Dujarric said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल वक्त हो चला है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री श्यामा की। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अदाओं वाली अभिनेत्री श्यामा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात की रात, आर पार सावन भादों और दिल दिया दर्द लिया जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा अभिनेत्री श्यामा ने। 50 और 60 के दशक में हिंदी और पंजाबी सिनेमा की बेहतरीन हीरोइनों में शुमार श्यामा की आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ, और चलिए इस प्रोग्राम की, इस घंटे की शुरुआत करते हैं फिल्म भाई भाई से इस सुपरहिट गीत के साथ। और ये चुलबुला गीत पिक्चराइज्ड है, जाहिर सी बात है, अभिनेत्री श्यामा पर। सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में, और फिल्म थी भाई भाई। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा श्यामा की। श्यामा का असली नाम खुर्शीद अख्तर था, निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें श्यामा नाम दिया था। श्यामा ने 45 साल की उम्र तक करीब 175 फिल्मों में काम किया। 7 जून 1935 को

लाहौर में वे पैदा हुई थी। 1938 में उनका परिवार बंबई आ गया। श्यामा की उम्र करीब 10 साल की थी। आपको बता दें कि उनका जो फिल्मी करियर था वो किस तरह से शुरू हुआ था, और बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी उम्र जब करीब 10 साल की थी तब उनके स्कूल के पास फिल्म जीनत की शूटिंग हुई। नूरजहां उस फिल्म की हीरोइन थी। वहां फिल्म में एक कवाली का सीन था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कलाकारों की जरूरत थी, और स्कूल की वो कुछ लड़कियां फिल्म की शूटिंग देखने उस जगह पहुंच चुकी थी, और फिल्म के डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी ने देखा कि सेट पर कुछ स्कूली लड़कियां मौजूद हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि फिल्म में तुम में से कौन काम करेगा। तो सारी लड़कियां शर्मा गई, लेकिन खुर्शीद ने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। बस तभी से श्यामा बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में एक्स्ट्रा और कोरस गर्ल के रूप में काम करने लगी, और बेबी खुर्शीद के नाम से जानी उन्हें पहचाना गया। और उसके बाद उन्होंने तराना, सजा, पतंगा, गृहस्थी, शायर, शबनम, नाच सहित कई बड़ी फिल्मों में एक सहायक कलाकार के तौर पर काम किया, और इस तरीके से बस उनका जो फिल्मी सफ़र था वो बचपन से ही शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके उन्हें बड़ी फिल्में भी मिलने लगी। तो चलिए फिलहाल हम पहुंचाते हैं आप तक फिल्म छोटी बहन से ये सुपरहिट गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

ये गीत आपने सुना फिल्म शारदा से और आवाज थी आशा भोसले की। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की, और फिल्म शारदा के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने बहुत सी चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा, जिनमें बहुत सारी फिल्में शामिल हैं, छोटी बहन, भाभी, माँ बाप, भाई भाई, हम लोग जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं जिनमें वे एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि श्यामा ने खलनायिका के रूप में भी पर्दे पर अवतार लिया था। उनकी आंखों से झलकती कुटिलता और मोहक सौंदर्य का फिल्मों में भरपूर इस्तेमाल किया गया। वहीं दिलीप कुमार अभिनीत दिल दिया दर्द लिया और सुनील दत्त की फिल्म मिलन उनकी कुछ आखिरी फिल्मों में शामिल थी।

0: कलाकार बेमिसाल में बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वज़ीरे दाखला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत की मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2025 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया व हर्ज़ेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख़वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क़यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिश

0: चीजें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं, जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख्वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। ये फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के अफसरान के साथ कल एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है, जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तिलात और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसव्वदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजा किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज करना है। उसूलों का ये मुसव्वदा इत्तिलात और नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नज़रसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीक़ेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आज़ादी के तहफ्फुज की ज़रूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच, एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के दो तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मेक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए-कार ला सकें। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jasprit Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a two-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NEET UG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
4: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably. NTA said that even small improvements in examination design can have a positive impact on the experience of candidates during a high-stake examination. These measures have therefore been introduced with the objective of making the examination process more comfortable and candidate-friendly while maintaining the highest standards of fairness and security. Candidates are advised to read the instructions given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for the smooth conduct of the examination. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: The Information and Broadcasting Ministry has released the Draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashwani News, Ambassador of India to France,

0: valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-host Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के

0: 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

0: वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के

0: स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजतायत। प्रसारित करत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात भूषण गोडे यांच्या ख्याल गायनात राग मधुवंती। विलंबित ख्याल एक तालामध्ये निबद्ध आहे तर द्रुत ख्याल हा 3 तालामध्ये निबद्ध आहे। विलंबित ख्यालाचे बोल आहेत ख्वाजा बंदे नवाज आणि द्रुत ख्यालाचे बोल आहेत मैं आऊ तोरे मंदरवा। त्यांना तबला साथ केली आहे संदेश पोपटकर यांनी आणि हार्मोनियमची साथ आहे श्याम देशपांडे यांची।

0: FM Gold, खरा सोना।
1: हेलो मित्रों, आकाशवाणी ना FM Gold 100.1 अने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप पर आपनु स्वागत छे। तमे सांभळी रह्या छो तमारो मनगमतो कार्यक्रम गीत गुर्जरी। आजना आ कार्यक्रम में हूँ छू तमारी साथे तमारो दोस्त अने होस्ट RJ बिपिन मेवाड़ा। मित्रों, आज छे शुक्रवार अने आजना दिवस नी वात करिए तो दर वर्षे 12 जून ना रोज विश्व बाळ मजूरी विरोधी दिवस तरीके उजवामां आवे छे। आ दिवसनो मुख्य उद्देश्य बाळ मजूरीनी समस्या अंगे जागृति फैलावानो अने तेने नाबूद करवा माटे वैश्विक स्तरे सहकार साधवानो छे। आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा 2002 में आ दिवसनी शुरुआत करवामां आवी हती। बाळकोने तेमना बाळपण, शिक्षण अने अधिकारोनुं रक्षण पूरुं पाडवुं अने 14 वर्षथी ओछी वयना बाळकोने मजूरी करावता अटकावुं आ दिवसनो मुख्य उद्देश्य छे। वधुमां आजना दिवसे राष्ट्रीय पीनट बटर कूकी दिवस तरीके पण उजवामां आवे छे। आ दिवस मगफळीનું માખણ એટલે કે પીનટ બટર અને કૂકીઝના શોખીનો લોકો માટે આ સ્વાદિષ્ટ અને પરંપરાગત મીઠાઈનો આનંદ માણવા માટેનો ખાસ તહેવાર છે।

मित्रों तमे सांभळी रह्या छो गीत गुर्जरी कार्यक्रम जेने हवे तमे न्यूज ऑन एआई मोबाइल एप डाउनलोड करीने देश विदेश में गमे त्यांथी सांभळी शको छो। मित्रों वात करी ज रह्या छे त्यारे मने एक किस्सो याद आव्यो ते तमने जणावुं। तो मारी सामे एक अंकल रहता हता त्यारे हूँ कॉलेज में भणतो हतो। नवा नवा कॉलेज ना दिवसों हता एटले बहु उत्साह हतो। परंतु हूँ वात करी रह्यो छुं ते अंकलनी। एक दिवस अंकल सखत बीमार पड़िया। तेना घर में एक नौकर सिवाय बीजू कोई ज नहोतुं। एटले अमारुं घर तेमनी बाजूमां जोवाथी पाड़ोशी धर्म खातर हूँ ने मारा घरमांथी कोईक ने कोईक तेमनो हालचाल अने तेमनी कशीक मदद करवा जता। थोड़ा दिवसों पछी मांदगीना कारणे तेमनुं अवसान थयुं एटले बधा लोको तेमना घरे भेगा थया अने तेमनी तमाम क्रियाओ पतावीने बधा तेमना घरमां बेठा हता। आ समये હું પણ ઘરમાં બેઠો હતો ત્યારે મેં સોફા પર એક બોક્સ જોયું જે ખુલ્લું પડ્યું હતું અને કુતૂહલવશ મેં એ બોક્સમાં જોયું તો તેમાં ઘણા લેટરો હતા। એ અંકલે કોલેજ

मित्रों तमे सांभळी रह्या छो FM गोल्ड 100.1 पर खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों शुरुआत में मैं तमने अगाउ बे प्रश्नों पूछ्या हता। एक पहलो प्रश्न हतो के मित्रों तमारा जीवन में पण कोई अधूरी वातोना किस्सा होय, अथवा बीजो एक प्रश्न हतो के एवो कोई मित्र होय जे कदाच समय अने परिस्थिति ने कारणे हाल तमारी साथे नथी, परंतु एवं लगे कि ए होत तो कदाच जीवन वधु सरल बनी गयु होत। आवा तमारा किस्सा अमारी साथे शेर करो। तो घणा मित्रों अनुभव शेर कर्या, तेमना नाम छे अल्पाबेन ठाकर। अल्पाबेन ठाकर नु कहेवु छे कि जे वात होय ते साम सामे करी लेवी जोईए, पछी व्यक्ति चाल्या जाए पछी तमे ए वात ने रड़ो कड़कड़ो तेनो कोई मतलब नथी। तो जतिनभाई दर्जी नु कहेवु छे कि एमना जीवन में एवो भाग्यशाली रहा कि जूना मित्रों जे शाला थी तेमनी साथे आजे पण छे, उपरांत पिताना मित्रोना छोकराओ पण तेमना आजे मित्रों तरीके साथे ज छे। बीजू किशोरभाई दर्जीनू एमना अनुभव शेर कर्यो, तो एमनु कहेवु छे कि ए अमदावादमां प्लेन क्रेशनी दुर्घटना बनी हती, तेमने एक वर्ष थयुं। तो ए प्लेननी अंदर बैठेला मुसाफरोना पण कंईक अरमान हता, कंईक वातो हती जे आ दुर्घटनामां क्यांक ने क्यांक एमनी साथे ज रही। तो एटले एवा घणा किस्साओ हता जे अधूरा ज रही गया। बीजू गुलाबभाई शाह ए तेमना किस्साओ संभळाव्यो, तो तेमनो कहेवु छे कि तमारी वातो सांभळीने मने मारा कॉलेजना दिवसो अने लग्नना दिवसो याद आवी गया, जूनी वातो एमनी याद आवी गई बधी। तो संजय दर्शनभाईनु कहेवु छे कि आजनो जमानो डिजिटल छे एटले सोशल मीडियाथी वातचीत करी शकाय, पण पहेलानो जमानो हतो जेमां कागळ लखवा पड़ता, एटले कोई व्यक्ति जो पसंद होय तो तेमने कागळ लखावीने वात जणावी पड़ती, अने कदाच ए कागळ लखवाना आळसमां कि आजे लखशुं काले लखशुं पछी लखशुं आम कहीने दिवसो वीती जता। बीजो के समाज अने परिवार के आसपासनो डर हतो, एना कारणे पण एमना मत हिसाबे घणा किस्साओ प्रेमना अधूरा ज रही जाता होय छे। तो आ सिवाय ઉષાબેન ખોના, અલ્પાબેન ઠાકર, રમેશભાઈ, નટુભાઈ ચાવડા આ તમામે પણ ફોન કરીને તેમના અનુભવો શેર કર્યા। તો તમામ શ્રોતા મિત્રો જેમણે ફોન કર્યો તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને જેમના ફોન રહી ગયા ઉપાડવાના તેમને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તેમણે પ્રયત્ન કર્યો। તો આ સાથે જ સાંભળીએ આ ગીત।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों का विरोध दर्ज कराने के लिए आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। कल एक और जहाज पर हमला किया गया जिस पर चालक दल के 22 सदस्य भारतीय थे। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमरीकी राजनयिक को तलब किया। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पहले इन्हें लापता माना जा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में आयोजित की गई। इसने सीमा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन से जुड़े आपसी चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगला गीत जो है ये हम सुनाने जा रहे हैं आपको फिल्म सीआईडी से, और इस गीत को गाया है आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज में और फिल्म है इनकार।

0: TC website. Do refer to www.ncrtc.in. I repeat the website. It is www.ncrtc.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक सीधी भर्ती अभियान के तहत आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन उप प्रबंधक सूचना सुरक्षा 4 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु मानव संसाधन प्रबंधन 3 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु प्रशासन 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.eximbankindia.in/careers। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक शैक्षणिक 1 पद, उपनिदेशक शैक्षणिक 1 पद, कार्यकारी शैक्षणिक 3 पद। तीनों पदों का नियुक्ति स्थान मुंबई रहेगा। अधिक जानकारी जैसे योग्यता, अनुभव, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.icsi.edu/careers। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जून 2026। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रेजिडेंसी योजना के अंतर्गत कॉलेज के विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in। वेबसाइट पर जाकर क्लिक कीजिए वर्क विद डीयू, उसके बाद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर करियर्स का अनुभाग देखें, इसमें आपको तमाम जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये विज्ञापन रोजगार समाचार के 6 से 12 जून 2026 के अंक में प्रकाशित हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर हैदराबाद आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, वित्तीय सलाहकार, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यकारी सहायक, निजी सहायक, तकनीशियन प्रयोगशाला और अपर श्रेणी लिपिक। तकनीशियन प्रयोगशाला के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि अपर श्रेणी लिपिक के लिए 3 तथा सहायक लेखा अधिकारी और नर्सिंग अधीक्षक के लिए 2-2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। अन्य सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति ही उपलब्ध है। शैक्षिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सभी शर्तों और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बीबी नगर की वेबसाइट aims.bbnagar.edu.in। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन फॉर्मेट, योग्यता शर्तें, अपेक्षित अर्हताएं, सेवा के लिए निबंधन और शर्तों जैसे अन्य ब्यौरों के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.ibbi.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आमंत्रित कर रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए आवेदन। पद संबंधी विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रारूप देखने के लिए देखिए वेबसाइट nidm.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि है 13

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन में हम बात करेंगे बाल श्रम के विरुद्ध, जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है उस पर। तो शुरुआत कार्यक्रम की करेंगे चार पंक्तियों के साथ, बचपन निश्चल मन कोमल तन, नटखट प्यारा सा बचपन, कभी होती मीठी शरारत, कभी रूठ कर छिप जाना, कभी जिद पर अड़ जाना, कभी गले का हार बन जाना, कभी अपना प्यार दिखाना, कभी होती हंसी टिटोली, बचपन की है हमजोली। और ये बचपन हर किसी को एक जैसा नसीब नहीं होता है। जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं उन्हें शिक्षा की ओर और उनके अल्हड़ बचपन की ओर लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें समर्पित है आज का दिन। तो डेडलाइन में विस्तार से बात करेंगे। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जागृति, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन सच अ ब्यूटीफुल नोट। वेल चिल्ड्रन, देयर इनोसेंस एंड दे डिजर्व ऑल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद दिस होप वी आर बिगिनिंग आवर प्रोग्राम टुडे। एंड एज जागृति टोल्ड अस इन आवर डेडलाइन segment we'll talk about it, and we have all of the other stuff also lined up for you. We have reports, capsules, tributes, they will be there at the end of the program, and this is our way of telling you that stay with us till the next roughly 30 minutes. There is so much that we are gonna unfold. First we are beginning with the headlines.
1: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है जिससे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान दे सकें।
2: होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्स हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयरेडनेस ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा इन न्यू दिल्ली।
1: सरकार ने उद्योगों को पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगाई।
2: United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman.
1: भारतीय निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन।
2: And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. So this is our segment Dateline India. Well, we told you today it's World Day Against Child Labour, and we welcome you to this special segment of our program as we commemorate the World Day Against Child Labour. This is observed globally every year on June 12th. And Jagriti, this international observance, sanctioned by the United Nations and coordinated by International Labour Organization, this actually serves as a powerful reminder, which we should get every year, that millions of children worldwide, they are still being denied one of their most basic rights, which is the right to enjoy a safe childhood. Also, second one, receive an education. Third, to pursue their dreams. So important. So listeners, join us as we examine the realities of child labor. We celebrate the progress that has already been made, and we'll confront the challenges that still remain. And we'll also discover how governments, communities, businesses and other individuals worldwide, they can work together to end this injustice once and for all. We will bring you facts, reflections, expert perspectives as well. There is so much, and practical actions that can help build a better future where every child has the opportunity to learn, grow and thereby thrive.
1: बिल्कुल,

0: बाल श्रम, जब बाल श्रम की हम बात करते हैं शगुन, तो बाल श्रम कई बार हमें ऐसा भी लग सकता है कि घर में जब छोटे बच्चे से हम कोई काम करवा रहे हैं तो क्या ये बाल श्रम है? तो श्रोता आपको बता दें कि ये बाल श्रम नहीं है। जब हम कहीं पर जाते हैं किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे या जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जो छोटे बच्चे, अक्सर जिन्हें छोटू करके बुला लिया जाता है, जिनकी उम्र है स्कूल जाने की, एजुकेशन लेने की, और उन्हें श्रम में लगा दिया जाता है, असल में वो होता है बाल श्रम। बच्चों के लिए किया गया हर जो बच्चा काम कर रहा है वो बाल श्रम नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि घर के हल्के फुल्के कामों में मदद करना, सुरक्षित माहौल में, पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनसे पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, बच्चे के विकास में उसका पॉजिटिव रोल अगर वो अदा कर रहा है तो वो बाल श्रम नहीं है।
1: राइट।
0: बाल श्रम का मतलब है ऐसा काम जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से उन्हें वंचित कर दे। ये ऐसा काम है जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और नुकसानदेह होता है। ये उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालता है, चाहे उन्हें स्कूल जाने से रोककर, बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर करके, या फिर स्कूल जाने के साथ साथ बहुत ज्यादा देर तक भारी काम करने के लिए बाध्य करके।
1: Well, yes, Jagriti told us about the whole of this. She made it clear to us what actually child labor is and the worst forms of child labor. Let's reflect upon that: slavery, trafficking, also forced labor, commercial sexual exploitation, recruitment into armed conflict also is included in it, and hazardous work that threatens children's health and safety. For example, in a firecracker factory. Right? And imagine a child working in dangerous mines, handling harmful chemicals on farms as well, or carrying heavy loads at construction sites, spending endless hours selling goods on the street instead of sitting in a classroom. For millions of children, this is not imagination. It is their everyday reality. They face it every day.
0: बिल्कुल। और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी जिससे कि बाल श्रम को हर तरह से खत्म करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके, क्योंकि जब समस्या का ध्यान खींचा जाता है उसी के बाद उसका समाधान सामने आता है।
1: सॉल्यूशंस कैन
0: बी पुट फॉरवर्ड। और ये दिन सरकारों, मजदूर संगठनों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज के समूहों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और आम नागरिकों को एक साथ आने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का मौका देता है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल श्रम सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है।
1: And elaborating upon that point, it is a human rights issue, it is an education issue, it is a development issue, and above all, it is a moral issue. It's a great way to put it actually. Children belong in schools, playgrounds, not at all in factories, in fields or mines or hazardous workplaces. And despite years of determined efforts, child labor, it still remains a significant global challenge. It's a sad reality. And according to current estimates, let's bring you some numbers, nearly 138 million children worldwide, they remain trapped in child labor. That's a huge number, Jagriti. And even more alarming is the fact that more than 54 million children, they are engaged in hazardous work, like in mines or firecracker factories, as we told you. This threatens their safety, health, and their overall well-being and their development.
0: और शगुन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर नंबर के पीछे एक बच्चा है जो आंकड़ा बन जाता है, जिसके पास होती हैं उम्मीदें, हुनर और सपने। एक ऐसा बच्चा जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसे मौके मिलने चाहिए, एक ऐसा बच्चा जिसका भविष्य बेहतर होना चाहिए। वर्ष 2026 बाल मजदूरी के खिलाफ चल रहे ग्लोबल कैंपेन में एक अहम मोड़ है।
1: And this Child Labor Day, World Child Labor Day, it has come at a decisive moment where the 6th Global Conference on the Elimination of Child Labor held in Marrakesh, it brought together governments and it's a Moroccan place actually, international organizations, employers, workers, representatives and civil society leaders and participants. They reaffirm the urgent need to accelerate efforts and then transform promises into actual practical action. And one of the major outcomes of the conference, this the global conference on the elimination of child labor, was the Marrakesh Global Framework for Action Against Child Labor. This framework, it provides a concrete map for governments and

0: stakeholders, and this outlines measurable indicators, integrated responses aimed at tackling the root cause of child labour. And this also protects the rights of every child. The message from Marrakesh was unmistakable. The time for action is now.
1: और 2026 में अभियान एक दमदार नारे के साथ चलाया जा रहा है और इसका नारा है बाल मजदूरी को रेड अलर्ट, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। और रेड अलर्ट का मतलब जो खेल के बारे में जानते हैं या अलग अलग खेलों के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल, तो रेड कार्ड का वो महत्व भी समझते हैं। रेड कार्ड का मतलब है कि गलत व्यवहार हुआ है और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। इस साल का अभियान दुनिया से बाल मजदूरी को रेड कार्ड दिखाने का आग्रह करता है। ये उन नीतियों पर मजबूत कार्रवाई की मांग करता है जो बाल मजदूरी को रोकती है, उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें शोषण वाली स्थितियों से निकाला गया है। इन नीतियों में शामिल हैं कुछ बिंदु: सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार करना, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम और पर्याप्त आजीविका को बढ़ावा देना, कानूनों को मजबूत करना और उन्हें लागू करने के तरीकों में सुधार करना, बेहतर निगरानी और डेटा इकट्ठा करने की प्रणालियां विकसित करना और कृषि प्रणालियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार तौर तरीकों को बढ़ावा देना।
0: And Jagriti, the challenge, it is enormous, but there is also a reason for hope. To accelerate progress, UNICEF and the International Labour Organization have identified several priority actions, which include investing in social protection, strengthening child protection systems, guaranteeing universal access to quality education, schools must be accessible, affordable for all, and safe and inclusive, particularly in rural communities and crisis-affected areas. And also promote decent work opportunities for both adults and youth. When adults have access to fair wages and secure employment, children are less likely to be forced into labor. And also enforcing laws and ensuring business accountability. Strong legislation, effective inspections and responsible business practices, they are essential for protecting children throughout supply chains. And the steps that we mentioned, they have been there to accelerate progress.
1: और श्रोताओं, बाल मजदूरी को ख़त्म करना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी होगी। माता पिता शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, शिक्षक कमज़ोर बच्चों की पहचान करके उन्हें मदद दे सकते हैं, समुदाय के जो लीडर्स होते हैं वो जागरूकता बढ़ा सकते हैं, कारोबार सही और नैतिक तरीके से अपना सकते हैं, युवा बदलाव लाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ग्राहक सोच समझ कर फैसले ले सकते हैं, सरकारें बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ बना सकती हैं और उन्हें लागू कर सकती हैं। हम में से हर किसी के पास ऐसी दुनिया बनाने में योगदान की ताकत है जहां बच्चों की अहमियत उनकी काबिलियत से हो, ना कि उनसे मजदूरी करवा के उनका शोषण किया जाए।
0: Well, it's a great way to put it, Jagriti. So let us raise our voices against exploitation and let us show the world that child labor has no place in our societies. And we stand for a future where every child can enjoy the childhood they deserve. So until next time, remember, listeners, every child deserves a childhood. Together, we can make it happen.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
0: So Jagriti, let's take our listeners first to Kozhikode. The Yuva Sangam, jointly organized by IIM Kozhikode in Kerala in collaboration with IIM Jammu, as part of nationwide youth exchange program by the central government, was notable for its organizational excellence and variety of programs. The Yuva Sangam was held from early June for a week. We have a detailed report.
2: The central government is celebrating the Yuva Sangam to strengthen the bond between the youth of the northeastern states and other states of the country and to uphold the concept of Ek Bharat, Shrestha Bharat. The program, which focuses on tourism, heritage, progress, technology and interconnection, adds more luster to the successful 12 years of the Narendra Modi government. As part of this, Yuva Sangam organized at the Indian Institute of Management, Kozhikode, was noteworthy. 33 students from Jammu and Kashmir, Ladakh and Chhattisgarh participated. Out of these, 18 were female students and 15 were male students. The group reached the UNESCO City of Literature, Kozhikode, under the leadership of

0: much more than which I deserve in terms of as a shooter, in terms of as a coach. So life has given a lot and I'm grateful for that. And still in the area where, you know, I can be connected with my shooters in my own academy, spending a lot of time with them. So it's good, really good.
1: How great. और आज तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी की पुण्यतिथि है. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री रेड्डी ने 5 दशकों से अधिक समय तक काव्य रचना की. पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री रेड्डी ने कविता, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य नाट्य, निबंध, यात्रा संस्मरण, साहित्यालोचन और गजलों का सृजन किया. सी नारायण रेड्डी ने फिल्मों में भी काम किया. 1962 में उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया. तेलुगु सिनेमा में 3000 से अधिक फिल्मी गाने उन्होंने लिखे. उन्होंने सैयद रफी निर्देशित फिल्म इनके नल्लू के लिए अपना आखिरी फिल्मी गीत लिखा था. 2011 में आई इस फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं.

0: listeners, we are also remembering the eminent Hindustani classical musician, writer, humorist P.L. Deshpande on his death anniversary. Well, he's also he has been a writer, humorist from Maharashtra, and he's actually an accomplished film and stage actor as well.
1: बिल्कुल, दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही वे जुड़े रहे और पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान ऐसे कई अलंकारों से सम्मानित किया गया था.
0: Today we are also remembering Hollywood legend Gregory Peck. Well, from his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audiences around the world the quintessential Hollywood leading man. Tall, dark and handsome looks complemented by an overwhelming sense of moral, physical strength as well. He received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962.
1: आज ही संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज ने अलविदा कह दिया था. वे योग और तंत्र के प्रकांड विद्वान थे. उन्हें पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय और साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था. और आज जयंती है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत भरतरी गायिका सुरुजबाई खांडे की. 1986-1987 में सोवियत रूस में हुए भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला. छत्तीसगढ़ सरकार से उन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भी मिला. आइए उनकी गायकी का एक अंश हम यहाँ पर सुनते हैं.

0: और आप जिस जहाँ पर भी रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मेट्रो आपकी लाइफ का अहम हिस्सा होगी। और वही मेट्रो देने वाले भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन का जन्मदिन है। कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेल का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार गीतांजलि श्री का भी जन्मदिन है। ये हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है।
1: Well, today we're also remembering Peter Granville Fonden, the English bassist and founding member of the rock band The Pretenders.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उछाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज मैं सुनाने जा रही हूं अपने ही कलम से सजी कहानी, अपनी ही जुबानी पानी पर लिखी कहानी आवाजों के साए। प्रस्तुति है रश्मि कुकरीती की। कहानी की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ।

स्टेज पर पलक की तस्वीर की बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। ऑडियंस उसके सम्मान में तालियां बजा रही थी। पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक खुश है, उदास है या फिर भावहीन, इसका अंदाजा वह खुद भी नहीं लगा पा रही थी। अपने जिस गीत के लिए उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलना था, वो उसे स्टेज पर परफॉर्म भी करना है। पर्पल कलर का गाउन, हाथ में चमकदार ब्रेसलेट और गले में

0: मोतियों का हार। स्टेज पर खड़ी पलक किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही मीठी आवाज में पलक ने गाना।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: प्लीज। पलक स्टेज के नीचे अपने सहयोगियों को देख रही थी, जिसमें गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के हीरो हीरोइन सभी उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। ऑडियंस में एक चेहरे पर पलक की पलकें ठहर गई। विनीत? नहीं नहीं, ये विनीत नहीं हो सकता, ये विनीत ही था। विनीत को देखकर उसका दिल धक सा रह गया।

पलक अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद आ रहा था कॉलेज का वो पहला दिन, कितनी डरी और सहमी हुई थी वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। सारे प्रोग्राम में उसे एक लड़के द्वारा पढ़ा हुआ गीत सबसे ज्यादा पसंद आया था और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश इस गीत को गाकर पेश किया जाता तो उसके भाव और भी उभर सकते थे। पलक ने जैसे तैसे करके विनीत के बारे में जानकारी जुटाई। विनीत हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है और उसे गीत और कविताएं लिखने का शौक है। पलक ने एक दिन रिक्वेस्ट करके विनीत से उसका गीत मांगा और शर्माते हुए पूछा, क्या आप मुझे अपना गीत कॉलेज फेस्ट में गाने की इजाजत देंगे? और विनीत ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी।

कॉलेज फेस्ट में पलक की आवाज ने धूम मचा दी। कॉलेज में सभी पलक को जानने लगे थे। धीरे धीरे पलक और विनीत एक दूसरे के नजदीक आने लगे और ये नजदीकी गहरी दोस्ती में बदल गई। पलक को कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता था। वह खुद को और विनीत को लेकर बड़े बड़े ख्वाब बुनती थी कि विनीत बहुत बड़ा गीतकार बनेगा और वो एक बेहतरीन सिंगर, जबकि विनीत को यथार्थ की दुनिया ही अच्छी लगती थी। वह अपने लेखन को शौक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसका सपना था कि वह जल्द से जल्द UPSC क्रैक करके एक बेहतरीन और बड़ा अफसर बने। पलक विनीत का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने सारे जहां भर की खुशियां अपनी झोली में समेट ली है।

कॉलेज का आखिरी दिन था, सभी बिछड़ रहे थे, पलक और विनीत भी उदास थे। विनीत अपने होम टाउन कानपुर अपनी माँ के पास जा रहा था। उसने कहा था कि हम टच में रहेंगे और फोन करते रहेंगे, पर कानपुर जाने के बाद विनीत के बिहेवियर में एक अलग सा बदलाव आने लगा था। विनीत ना जाने क्यों अब पलक से बचने लगा था, उसके फोन कॉल्स और मैसेजेस के जवाब भी कम ही देने लगा। पलक सोच रही थी कि जिस फोन का इंतजार विनीत को हमेशा रहता, जिस फोन से विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी, जिस फोन को विनीत अपनी कमाई कहा करता था, वह फोन अब सबसे आखिरी जरूरत क्यों बनता जा रहा था। पलक का दिमाग सैकड़ों सवाल बुनने लगा, वे अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसकी सुबह सवालों के बवंडर से शुरू होती, जिसे वे रात तक आते आते इंतजार जैसे बोझिल शब्द पर लाकर खत्म कर देती।

104.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। कागज पर लिखी कहानी में आज मैं सुना रही हूं अपनी ही कलम से सजी कहानी आवाजों के साए, जिसमें मैंने अब तक आपको बताया सुनाया कि पलक को आज बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलने वाला है। पलक एक ऐसी लड़की है जो बहुत भावुक है और जिसे कल्पना की दुनिया में रहना अच्छा लगता है। स्टेज पर खड़ी पलक ऑडियंस में विनीत का चेहरा देखकर अतीत की स्मृतियों में चली जाती है, जब वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे और दोनों में गहरी दोस्ती थी। अपने होम टाउन कानपुर जाने के बाद विनीत का बिहेवियर बदलने लगता है और कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आप हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। नंबर एक बार फिर से 9868868753 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com पर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पलक को भी लग रहा था कि उसका इंतजार सलामत रहेगा, पर ऐसा ना हो सका। विनीत का नंबर अब नॉट रीचेबल आने लगा। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीतते गए, पर विनीत की कहीं से कोई खबर नहीं आई। पलक का दर्द बर्फ की तरह जमने लगा था। अपने दोस्तों और परिवार वालों के बहुत समझाने पर पलक एक सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई चली गई और संघर्ष करने लगी। धीरे धीरे पलक की जिंदगी ट्रैक पर आने लगी। एक दिन रिकॉर्डिंग के बाद पलक घर लौट रही थी। उसने फेसबुक पर विनीत के शादी के फोटोग्राफ देखे। उसे लगा कि शायद उसकी सांसें थम गई हैं, उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। आवाज से मानो शब्द छीन लिए हैं, संगीत से मानो सुर छीन लिए हों, और पलक को अपना अस्तित्व ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी जिंदगी की गूंज छीन ली हो।

उसने लैपटॉप को तो शटडाउन कर दिया, मगर अपने दिमाग को शटडाउन कैसे करती। कांपते हाथों से पलक ने विनीत का नंबर मिला दिया। विनीत का मोबाइल रिंग कर रहा था। पलक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर से आवाज आई, हेलो कौन? हेलो विनीत, मैं पलक। हाय पलक, कैसी हो? अच्छी हूँ, शादी के लिए बधाई विनीत। थैंक यू पलक, मुझे मालूम था कि तुम मुझे फोन जरूर करोगी। चलो एक बार फिर मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी उतरी। पलक ने गहरी सांस भरते हुए विनीत, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? ओहो पलक, तुम अभी भी उस प्यार में उलझी हुई हो? वो टीन एज थी बाबा, तुम अपने कल्पनाओं की दुनिया से बाहर क्यों नहीं आती? तुम आज भी फैंटेसी में जीती हो। मुझे लगता है कि तुमसे ब्रेकअप करके मैंने बहुत अच्छा किया। जिंदगी कल्पनाओं के सहारे नहीं चलती, उसके यथार्थ को स्वीकारना जरूरी होता है। मेरी भी अपनी इच्छाएं थी, मैं भी अशोरम की जिंदगी जीना चाहता था, मुझे भी समाज में रुतबा चाहिए था, और फिर तुम जैसी स्टेज पर गाने वाली को मेरी माँ भी तो स्वीकार नहीं करती। माधवी मूव ऑन करो, एक सलाह दूं, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। कहते हुए विनीत ने फोन काट दिया।

पलक पत्थर हो गई थी। वह विनीत से बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, पर विनीत की अभिमानी से भरी बातों ने उसके सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। पलक अब कुछ भी नहीं पूछना चाहती थी, वह सिर्फ प्रैक्टिकल होना चाहती थी। एक दिन ब्रेकफास्ट के दौरान पलक अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी। उसने देखा कि उसमें एक मेल रवि जोशी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है और उन्होंने उसे दो एड जिंगल गाने के लिए इनविटेशन भेजा है। ये वही रवि जोशी हैं जिनका एड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और जो फिल्मों में गीत भी लिखते हैं। पलक को एड जिंगल गाने के ऑफर पहले भी मिलते रहे थे, पर वो ऐसे ऑफर ठुकराती रही है क्योंकि पलक सिर्फ बॉलीवुड में सिंगर बनना चाहती थी। पर इस वक्त उसके कानों में सिर्फ विनीत के शब्द गूंज रहे थे, बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। पलक ने यह ठान लिया था कि वो अब दिखा देगी और वो अब अपनी आवाज के सहारे ही अपनी आवाज को एक नई पहचान देगी।

म्यूजिक डायरेक्टर ने स्टूडियो में एड जिंगल की रिकॉर्डिंग शुरू की। पलक जी, फील इट, महसूस करिए, बहुत फ्लैट गा रही हैं आप, एक बार फिर कोशिश करते हैं। पर सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। मैम, आपसे नहीं होगा, झल्लाता हुआ म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल आया। स्टूडियो के बाहर रवि जोशी अपने किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वे मैडम तो कुछ गा ही नहीं पा रही है। आप तो कह रहे थे कि वो शब्दों की को बहुत गहराई से महसूस करके गाती हैं, मुझे तो कोई बात नजर नहीं आती। सर, अब आप ही कुछ कीजिए। रवि जोशी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। और वो सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चले गए, जहाँ पलक डरी और सहमी हुई बैठी थी। पलक जी, रिलैक्स। रवि जी, क्या मैं बेसुरा गा रही हूँ? नहीं। क्या स्केल में नहीं गा रही मैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कमी है? भाव, भाव नहीं है आपकी आवाज में। ऐसा लगा मानो किसी ने पलक को बहुत भीतर तक झिंझोड़ दिया। पलक के भीतर कुछ पिघल रहा था, शायद भाव की वही नदी जिसकी इस एड जिंगल को जरूरत थी। पलक एड जिंगल के साथ साथ रवि जोशी द्वारा लिखे गीत भी गाने लगी थी।

0: एक प्यारी सी परिचित आवाज ने उसकी स्मृतियों के पुल को तोड़ दिया। बाबा वोट तो ले लिया, कुछ बोलूंगी भी, न जाने क्या सोच रही हो। ओ ये तो रवि की आवाज है, ये रवि की आवाज है, ये वो रवि ही था जिसने पलक की आवाज के सैंपल को बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचाया था, बल्कि उसको मिलवाया भी था। आज जिस गीत के लिए पलक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा था, उसका गीतकार कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। पलक ने ऑडियंस को थैंक यू कहा और जल्दी जल्दी स्टेज से नीचे उतरने लगी। किसी चीखती आवाज ने पलक के कदमों को रोक लिया। पलक मैम, आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके कई लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत सी वीडियोस देखे हैं। मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैम ये विनीत शर्मा हैं, मेरे हस्बैंड, इन्हें भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम ये भी बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, क्या आप इनके गीतों को आवाज़ दोगे? पलक ने विनीत की तरफ देखा और विनीत ने जमीन की तरफ, मानो किसी पाताल में उतर जाना चाहता हो। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। पलक ने डर के मारे रवि का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी आंखें भराई थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पलक, मिसिस विनीत ने तुम्हारी आवाज को मांगा है बाबा, तुम्हें नहीं। दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। पलक अपने दुख के आगे बेबस होती जा रही थी। रवि ने उसे गले लगा लिया। वो रोते जा रही थी, वो कह रही थी, रवि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती और ना ही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। रवि मन ही मन सोच रहा था कि पलक के मन की ये कौन सी परत है जिसे उसकी कलम भी नहीं छू पाई है। रवि सवालों के खंडहरों में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि खंडर हमें अतीत तो बताते हैं पर उसमें कभी घर नहीं बसाया जा सकता। रवि एक घर बनाना चाहता था जो
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब मुझे पानी पर लिखी कहानी समेटने की दीजिए इजाजत, जो लिखी थी मैंने ही और मेरी ही जबानी आपने सुनी, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी रश्मि कुकरेती जी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस सुहानी शाम को और भी सुहाना बनाने के लिए मैं लाई हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत। तो चलिए पहला गीत सुन लेते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज में, और फिल्म है आराधना।

आपका और हमारा साथ जब होता है तो खिलना तो होता ही है गुलों को, अब गली गली खिलें या कली कली। अगला गीत खुशबू मूवी से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी अलविदा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज

0: श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है

0: भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना।
1: मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 0.93% in May this year, and global crude oil prices declined around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 1,700 अंक उछला, निफ्टी 23,600 के स्तर से ऊपर दर्ज। मई के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 4% की गिरावट। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे शेयर बाजार पर, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर।
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त से बंद हुए। पश्चिम एशिया संकट के हल होने की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई दर में नरमी के संकेतों से निवेशकों का उत्साह बना रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.3% की बढ़त से 1,695 अंक उछलकर 75,528 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2% की तेजी से 461 अंक बढ़कर 23,623 के स्तर पर रहा। एनएसए मिड कैप सूचकांक में 2.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.8% की मजबूत बढ़त दर्ज हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex surged 1,695 points to close at 75,528, while the Nifty jumped 461 points to settle at 23,623. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index climbed 2.4% and the small-cap 100 index soared 2.8%. Investor sentiment was further boosted by a decline in oil prices, with Brent crude falling below the $90 per barrel mark, helping ease concerns over inflationary pressures.
1: सेंसेक्स पैक की 28 कंपनियों में आज मजबूती रही। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस 5.6%, L&T 5% और इंडिगो 4.6% के उछाल से बंद हुए। हालांकि टेक महिंद्रा में 2.2% और पावर ग्रिड में 0.6% की गिरावट भी नजर आई।
0: And among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all 25 sectors ended in the green. Realty advanced 3.55%, mid-small private banks quality tilt index rose 3.5% and industrials gained 3.45%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 3,222 companies advanced, 1,046 declined and 154 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 65 पैसे की मजबूत बढ़त से 95.11 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.74 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, किस तरह से देखेंगे, एक खबर आती है अच्छी सी, उम्मीदों के आसमान शायद जग जाते हैं और शेयर बाजार पर इसका साफ असर नजर आता है। क्या यह माना जाए कि जो आज लगभग 1,700 अंकों का उछाल है, ये अगले जो सोमवार से कारोबार की शुरुआत होगी वो इस धारा से और आगे बढ़ेगा, या इसमें अभी कुछ संशय है?
2: अमित, देखिए, अभी जो बाजार जिस दौर से गुजर रहा है वो बहुत ही वोलेटाइल एक माहौल है, और हर रोज जो नया एक खबर आती है, सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है ये, क्योंकि और ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है तेल की कच्चे तेल की कीमतों से। ये सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है जो यूएस ईरान वॉर को लेकर, कि क्या वहाँ उम्मीदें हैं, क्या वो वॉर कम होगी या आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी हम लॉन्ग टर्म में हम अभी फोरकास्ट नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा, लेकिन मुझे कुल मिलाकर ऐसा लगता है जो बाजार को इंटरनल्स हम देखते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशोज हैं, जो जिस प्रकार से बाजार का रुख रहा है पिछले दिनों, मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में बाजार को बेहतर स्तर पर देखेंगे। मुझे लगता है जो बॉटम बन चुके हैं मार्केट्स के, नीचे लेवल्स पर कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, और आने वाले समय में मुझे यहाँ से बेहतर लेवल्स की उम्मीद है।
0: या पुनीत, इफ यू टॉक ऑफ द ब्रॉडर मार्केट्स हियर, यू नो, द मिड कैप अप बाय 2.4%, स्मॉल कैप एज वेल अप बाय 2.8%। ऑल ऑफ अस नो दैट द ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली द स्मॉल कैप्स, दे ब्लीड एंड ब्लीड लाइक हाउ when markets go down. Now, here on, as Amit was also mentioning, coming week from Monday onwards, if we can see this momentum kind of carrying on into the next week as well, can we say that the small cap as well to

0: some extent the mid cap as well, which had bled like anything over the past 6 months or so, especially over the past 3-4 months, can actually pick up and kind of give that rocket boost which actually everyone is looking forward to.
1: So Nishit, you are right. See, mostly small investors or retail investors are invested in mid cap and small caps in the stocks. Large investors, institutional players, they dominate large caps. And mostly if retail is participating in large caps, it is mostly through mutual fund route. So it is a diversified holding. So retail sentiment is usually very closely linked to the performance of the mid cap and small cap stocks. You're right, in the last few months, particularly from December till March, we saw a very significant fall in small cap and mid cap stocks, and consequently in retail investors very I would say they were very negative about the market going forward. Fortunately, in the last 1.5 months, we have seen a strong rebound in mid cap and small cap stocks. And if you really look at why that has happened, is because FIIs, which have been very large sellers in Indian market, they were largely selling large cap stocks, and retail was participating in mid cap, small caps. So there we saw some kind of outperformance in the last few weeks. My own expectation is that in the next 6 months, we will see markets doing better, because I think all this crisis will reduce going forward, first of all. Secondly, retail participation in the mid cap, small cap will grow, and I think FII money will also come back to the markets. So my guess is, while we'll see indices do better, we will see much stronger maybe pullback, like you said. It's very volatile. Usually it goes up a lot and goes down a lot. Volatile mid cap and small
0: true
1: caps.
0: True to its nature.
1: So particularly they are low small cap companies.
0: Right.
1: So my expectation is that it will outperform. Small cap and mid cap indices will outperform.
0: Now, coming to primary markets, Puneet, you know, as we say, the daddy of all the big IPOs, it's opening tonight, but also, you know, the Indian IPO market has been quite kind of TP'd, if we may say so, over the past few months, especially, you know, post-February now. Now, can this, the big IPO which is opening, you know, tonight, can also kind of give that turbocharge to the Indian primary market?
1: So you're right. I mean, tonight is one of those, I would say, historic nights in the history of capital markets, where one of the world's largest IPOs ever, SpaceX, almost $75 billion IPO in the US markets. So Indians, of course, are not, as Indian investors, we can't access the market.
0: True.
1: But globally, I think for the capital markets, a very big event, the world's largest IPO is opening. And I think the markets are primed for it, in the sense that we have seen a very strong rebound in the US markets, and the technology stocks, of course, have been at the forefront. The AI stocks have been at the forefront of this entire rally. So I think once this IPO is behind us in terms of capital raise, in terms of news flow which is happening, it will definitely have a rub-off effect on other IPOs which are waiting. Usually what happens is, when such a large IPO happens, most of the global liquidity flows to that market. So you will see all FIIs, big institution investors, they'll flock to the US markets, they'll be investing there. And once this IPO is behind us, I think in next few days, then I think some capital will flow back to emerging markets. And therefore, I expect as the secondary markets, they pick up in the next few months, IPO market in India should start picking up, but I think towards later half of the year.
2: पुनीत, आपने जैसा भी बताया कि अगर तो जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, तो क्या उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहीं ना कहीं हम भारतीय बाजार या एशिया महाद्वीप के जो बाजार हैं उन पे पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा है तो क्या अगला जो सप्ताह है उसकी सुस्त शुरुआत की उम्मीद करें या आशंका करें?
1: अभी देखिए, बड़ा इसका बहुत सारे बड़े फैक्टर्स, जैसे दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, करीब करीब रुपए टर्म्स में बात करें तो 7 लाख करोड़ रुपए का ये आईपीओ, पब्लिक से रेज करने का आईपीओ है अमेरिका में, उसका असर बाजार पे पड़ता है, सेंटिमेंटली भी पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी उसका पड़ता है. साथ में हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो वहाँ पर भी बहुत बड़ी न्यूज़, दुनिया हिलाने वाली न्यूज़, मैं कहूँगा कि एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, वो भी हम देख रहे हैं. साथ में हमने देखा है कि जो AI ड्रिवन जो एक रैली थी, हिस्टोरिक रैली थी, अगर हम कोरिया एक बाजार की बात करें तो वहाँ पर पिछले एक वर्ष में करीब करीब 2.5 गुना इंडेक्स हो गया है कोरिया में, ताइवान में उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई है, जापान में। तो जो टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन स्टॉक्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा गया है पिछले दिनों। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनसे बाजार के सेंटिमेंट को असर पड़ रहा है। भारत इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहा है। इंडिया की मार्केट जो है वो एक्चुअली थोड़ी पिछड़ी है क्योंकि हम इन सभी फैक्टर्स से दूर थे। मुझे लगता है कि जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, जैसे ये चीज़ें थोड़ी बदलेंगी वहाँ, इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि भारत में हम कुछ नया निवेश देखेंगे। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ा पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं भारत में, मुझे उम्मीद है कि इस साल इन सब फैक्टर्स का जब टर्न अराउंड होंगे तो भारत में एफआई बाइंग शायद दोबारा से देखें टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर।
2: पुनीत, आप काफी वित्तीय बाजार के एक बहुत गहरे विशेषज्ञ हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये जो एआई का बबल है, वो मैं बबल इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का, तो एआई का ये जो दौर है वो अगर बबल में वो फटे ना भी सही, लेकिन अगर वो थोड़ा सा संकुचित होता है, छोटा होता है, तो क्या इमर्जिंग मार्केट जैसे जिसमें भारत भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या इस बाजार को सीधे तौर पे उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आता है? क्योंकि एआई पे उम्मीदें ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस कितना होगा ये कोई नहीं कह सकता।
1: नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल सीधी बात कही। मैं भी, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है, ये एआई बबल एक वैल्यूएशन बबल है पूरी दुनिया में। और देखिए, जब ताइवान में एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज भारत की पूरी बाजार से मिलाकर कुछ से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। उसकी अर्निंग इतनी नहीं है, पी मल्टीपल 400 टाइम्स 500 टाइम्स हो गए हैं। कोरिया में दो कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर उनका वेटेज जो है इंडेक्स में वो 50% को क्रॉस कर गया है। तो देखिए, ये सब बबल्स है, ये सब एक डिस्टॉर्शंस है मार्केट की। लेकिन अभी फिलहाल इन डिस्टॉर्शंस में क्विक पैसा कमाने के लिए सारी दुनिया का जो कैपिटल है, रिस्क कैपिटल है, वहाँ अट्रैक्ट हुआ हुआ है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जैसे ही ये बबल इसका पंक्चर होगा तो हम देखेंगे कि ये कैपिटल, कुछ सैनिटी वापस बाजारों में आएगी। अब भारत जैसे जो डाइवर्सिफाइड मार्केट्स हैं और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, हमारे पी मल्टीपल जो है वो बहुत अट्रैक्टिव आ गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कैपिटल वापस इंडिया में आना शुरू हो जाएगा समटाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर।
2: आपने वैल्यूएशन की बात करी, भारत में अभी कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पे इस बाजार में जिनकी वैल्यूएशंस आपके हिसाब से बेहतर नजर आती है, जहां सीधे तौर पे निवेशक या हमारे जैसे एक आम जन सीधे सीधे तौर पे वहां पे निवेश करने की उम्मीदें जगा सकते हैं या देख सकते हैं?
1: अमित, देखिए, मुझे वैसे ये एक प्रकार से मुझे खुशी भी होती है कि जो अच्छे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छे मौके हमारे बाजारों में आए हैं, क्योंकि एफआईआईज ने इंडिस्क्रिमिनेटली शेयर्स बेचे हैं। तो आईटी क्षेत्र आप देखें, वहां पर पी मल्टीपल जो है 11-12 टाइम्स के रह गए हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल्स में, बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट आई थी पीछे, हालांकि आज बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स काफ़ी बढ़े हैं, पर अभी भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। डिफेंस सेक्टर,
2: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ही तेजी रही है, निजी क्षेत्र के बैंक अभी भी
1: दबाव में, और सरकारी क्षेत्र के बैंक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हैं। वहाँ पीपीई मल्टीपल आप देखें तो 6-7 से ज़्यादा अभी नहीं है। इसी तरह से डिफेंस क्षेत्र है, हेल्थ केयर है, वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है। भारतीय बाजारों में कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मौके हैं इन्वेस्टर्स के लिए।
0: पुनीत, इफ मैं टेक फॉरवर्ड दिस डिस्कशन एंड टॉक अबाउट द आईटी स्टॉक्स इन इंडिया, यू नो द आईटी, इवन द ब्लू चिप्स, यू नो दे हैव बीन काइंड ऑफ कम डाउन टू सम लेवल wherein इट्स सो माउथ वाटरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो हाउ डू यू सी दैट सेक्टर कमिंग अप?
1: So Nishad, I think right now it is a matter of faith. So whether you think AI will puncture Indian IT stocks further, but I find them very attractive. I think they are very good long-term investments, and Indian IT companies are very well equipped to deal with this so-called AI, you know, bubble.
2: खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं खुदरा मुद्रास्फीति पर। मई के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर बढ़कर 3.93% हो गई। अप्रैल के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 3.48% थी। लगातार 5वें महीने खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़त दर्ज हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर मामूली बढ़त से 4.25% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर बढ़कर 3.53% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति 4.2% से बढ़कर 4.78% रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बावजूद घरेलू महंगाई दर रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा में ही है। महंगी होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम, आभूषण, टमाटर, अदरक और किशमिश जैसे पदार्थ रहे, जबकि आलू, मोटर कार, जीरा, मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसी वस्तुओं के दामों में महंगाई की मार काफी सीमित नजर आई। पुनीत, इस खबर को कितना अच्छा मानते हैं, क्योंकि अगर हम 4% का रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है कि 4% के भीतर ही इसको सीमित रखना है और उसमें इतनी सब कुछ, हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो खाद्य मुद्रास्फीति में ही मोटे तौर पे बढ़त नजर आई है जिसकी वजह से ये असर हुआ है, क्या इस तरह की जो महंगाई अगर हम मामूली बढ़त भी देखते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना समायोजित करता है?

0: हुआ नजर आता है।
1: अमित देखिए मतलब मैं अगर ये कहूँ कि इकोनॉमिस्ट लार्जर पिक्चर जी, तो मुझे लगता है ये इन्फ्लेशन ये डेटा जो आया है बहुत अच्छा डेटा है। खास कारण ये है कि एक तो अभी सारे फैक्टर्स नेगेटिव थे, पूरा आप डिसरप्शन देख रहे हो, करीब करीब 3 महीने से डिसरप्शन चल रहा है, मार्च अप्रैल और मई का डेटा है ये। तो आप देखें कि 3 महीने से आपको हर प्रकार के डिसरप्शन हैं, सप्लाई चेन्स में कच्चे तेल की कीमतों में भी इशू आया है, और अगर हम इसको देखें तो जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन डेटा ऊपर आया है, उसके बावजूद भी ये एक टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। आरबीआई का जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का वो 4% है, प्लस माइनस 2%, यानी 6% तक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है कि कंफर्ट जोन में हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तो उससे हम काफी दूर हैं। तो जिस प्रकार से मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के सवाल को, मुद्दे को सरकार की नीतियों ने टैकल किया है और कंट्रोल में रखा है, और इसमें भी अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें यानी फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को बाहर निकाल करके इसको देखें, तो वो कंट्रोल में, बहुत अच्छे कंट्रोल में है वो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, अगर ये नंबर्स देखे जाएं और अगर हम सस्ते, और सेकेंडली एक और बड़ा बात है, लास्ट ईयर इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत नीचे थे अगर आप याद करें, 1% से भी नीचे आ रहे थे। तो ये स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं कि जब बेस लो होता है तो अगले साल का डेटा थोड़ा ऊपर दिखाता है। तो इन सब चीजों को देखते मुझे लगता है नंबर्स जो है बहुत इनकरेजिंग नंबर्स।
0: आपने चर्चा की सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से सभी चीजों का संतुलन बनाया। सरकार ने हाल ही में जो व्यापारिक क्षेत्र है उसके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन जैसी स्कीमें भी लॉन्च करी, क्या आपको लगता है इस सब चीजों का, वो जो एक बाजार में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था, इस तरीके की जो स्कीम अगर सरकार लाती है तो पूरे बाजार में खासतौर पे जो मध्य व्यापारी वर्ग है, एमएसएमई की बात हम करें, वहां से जो जिस तरह से रोजगार के आंकड़े बढ़ते हैं, वहां से जो कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ते हैं, उनसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल अमित, और इसका मैं आपको मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये युद्ध शुरुआत हुई तो बहुत डर था कि तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, सप्लाई चेन नहीं आ रही थी, एक डर का माहौल था। और अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शन आ रही हैं, वो अभी भी 6.5 से 6.6, 6.7 का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। यानी जो जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी उसमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन ज़्यादा गिरावट हम नहीं देख रहे। ये आसान काम नहीं है। अगर हम अपने आसपास की अर्थव्यवस्थाएँ देखें, जो अपने पड़ोस के देशों की भी अर्थव्यवस्था देखें, तो करीब करीब वो अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है इस पूरे डिस्ट्रप्शन से। और भारत में उसका हम, आप देखिए सच, हम आज रोजमर्रा के जीवन में आसपास देखें इतना बड़ा डिसरप्शन नहीं है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है लेकिन डिसरप्शन नहीं है। मुझे लगता है ये काफी
0: बड़ी उपलब्धि
2: है। That talks about the fundamental and robustness of our economy, Puneet. And moving on to some other stories now, the India's foreign exchange reserves declined marginally by $711 million to $681 billion during the week ended June 5th. According to Reserve Bank of India, foreign currency assets, the largest component of the reserves, decreased by $2.7 billion to $543 billion during the week. In contrast, gold reserves rose by $1.9 billion to $114 billion. Special drawing rights, SDRs, added $18 million to $18.76 billion. The country's reserve position with the International Monetary Fund remained largely unchanged at $4.82 billion.
0: नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज तेजी का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.6%, जापान का निक्केई 2.8%, ताइवान का टाइक्स 2.4%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.9%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.8% की बढ़त से बंद हुए। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में मजबूती रही। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 1.1% से 1.8% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
2: And in the US markets, US equities ended higher yesterday, supported by easing geopolitical tensions after President Donald Trump said he had canceled planned military strikes against Iran and indicated that a peace deal could be signed in the near future. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index soared over 2.5%, the Dow Jones Industrial Average jumped nearly 1.9%, and the S&P 500 advanced more than 1.7%. The market participants were also focused on the world's largest IPO listing expected to take place later tonight. On the economic front, the Producer Price Index PPI stood at 1.1% in May, according to data released by the US Bureau of Labor Statistics. Puneet, some

0: encouraging numbers, of course, you know, buoyed by the peace deal in the offing, which is it's yet to be seen how it shapes up, you know, how it pans out. But yet, of course, you know, even, you know, the little bit of whatever news in trickling in is kind of buoying, you know, the markets. Now, coming to the Fed meet, which is to happen, you know, in a few days' time from now, how do you see the Fed actually reacting? Because, of course, all of us know that the Fed meeting, the outcomes of it, would, of course, spill over to our markets as well.
1: Absolutely. So, of course, U.S. Fed is the big daddy of the world monetary markets. So, clearly, whatever they do in U.S., even if they sneeze, other markets are catch cold.
0: True.
1: So, but however, I think, given the numbers that we have in front of us, I think that we won't see any major move from U.S. Fed right now. Of course, President Trump always wanted a rate cut. So, he got his favorite person to come as a chairman as the chairman of the US Fed. So mostly, if you had asked me 3-4 months back, I would have said the first move of this new chairman would happen to cut rates. But given the political situation right now, I don't think he has any headrooms, because in the US, the inflation rate in US has gone above 4%. So clearly there is no headroom for him to cut rates. My guess is they will stand pat. They will keep monetary conditions easier. They don't want to rock the boat. And I think there's been a lot of talk about Fed raising rates towards end of the year, but my guess is that we're not going to see any major move for next 3 to 6 months from US Fed on the interest rates.
2: पुनीत, अगर एशियाई बाजारों की बात करें, यूरोपीय बाजारों के भी रुझानों की अगर बात करें, आज वहां पे भी काफी उत्साहजनक माहौल रहा है. तो जिस तरह से अगर अमेरिका की जो फेड की मीटिंग है, उसी तरह से अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें, वहां पे भी जो ब्याज दरों की बात चल रही है, उसमें क्या उम्मीदें नजर आती हैं और किस तरह से उनका व्यवहार आपको नजर आएगा? क्या वहां के बाजार इस आशंका में भी या इस उम्मीदों पर भी तेजी दिखा रहे हैं कि वहां से कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीदें हैं?
1: देखिए, बैंक ऑफ जापान की प्रॉब्लम अमेरिका से उल्टी थी. वहां पर अमेरिका और जापान में बहुत लो इंटरेस्ट रेट थे और उनकी करेंसी में काफी गिरावट आ रही थी. तो जापान ने पिछले एक वर्ष में थोड़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है अपना. वहां पर जो बॉन्ड यील्ड्स थी, करीब करीब जीरो थी, वो बॉन्ड यील्ड्स वहां पर थोड़ी ऊपर आई है, और जिससे कि थोड़ा पैसा जो है वापस जापान में वो अट्रैक्ट कर सके. तो मुझे लगता है कि जापान में अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं. वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है और नई सरकार है वहाँ पर. दे वांट टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो मुझे लगता है कि जापान, और वहाँ पर करेंसी भी स्टेबलाइज हो गई है, 160 येन टू द डॉलर अब करेंसी स्वैप रेट है. मुझे लगता है जापान में अब एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान. बट आई थिंक जापान इज नॉट एन इशू राइट नाउ फॉर ग्लोबल मार्केट. अमेरिका इज द मेजर इशू जहां पर मार्केट देख रही है.
2: मुद्रा की बात करिए, अगर मैं वापस से आपको घरेलू मुद्रा बाजार में लेके चलूं, रुपए ने भी बेहतर कुछ दिनों से प्रदर्शन किया है. रुपया काफी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले. ये क्या वजह और ये कितना स्थायी नजर आता है?
1: देखिए, इसमें हमें दो खास कारण हैं, उन्हीं पर हम अभी बारीकी से नज़र रखे बैठे हैं. पहला तो सबसे बड़ा है जो क्रूड ऑयल का जो रेट है, बिकॉज भारत ज़्यादातर क्रूड इंपोर्ट करता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर बहुत भारी असर पड़ता है, एक्सपोर्ट्स सप्लाई चेन्स के ऊपर भी पड़ता है. तो वहाँ पर हमने देखा है थोड़ा क्रूड के जैसे दाम कम आए, थोड़ी वहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, तो आज रुपये में काफ़ी अच्छी बढ़त विज़ अ विद द डॉलर, यानी रुपया अप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द डॉलर. दूसरा एक अगेन यहाँ पर बहुत बड़ी मैं कहूँगा काबिल तारीफ बात है, वो कि सरकार ने जो प्रोएक्टिव कदम उठाए, रिजर्व बैंक की जो लास्ट पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें उन्होंने काफ़ी लिबरल कदम उठाए हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज, पर्टिकुलरली एफसीएनआरबी अकाउंट में जो छूट दी गई है, वहाँ पर जो लीवे दिया है बैंक्स को, ऐसी हमारी उम्मीद है. और कुछ कंसेशंस दिए गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स खरीदने के लिए. उसका असर यह रहा है कि पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में खरीदे हैं. ये निवेश भारत में आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन. तो सरकार के जो प्रोएक्टिव कदम थे फॉरेन एक्सचेंज अट्रैक्ट करने के लिए, उसका नतीजा हम देख रहे हैं. और तभी आप देख रहे हैं कि रुपए में अच्छी बढ़त आई है वीजा विद डॉलर, और एक स्टेबल अब स्टेबिलिटी के आसार वहां दिख रहे हैं.
2: मतलब सरकार हर चीज पे बिल्कुल बारीकी से नजर रखी हुई है, तुरंत कदम उठाती हुई नजर
1: तुरंत कदम. कई बार क्या होता है, सरकार थोड़ी सी अगर कदम बाद में उठाती है तो उसका असर का कदम का फायदा नहीं होता. तो ये प्रोएक्टिव स्टेप्स बहुत फायदेमंद है.
0: एंड मूविंग ऑन टू क्रूड नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन टुडे. द ब्रेंट क्रूड फेल 3.7% टू $87.02 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड, वाइल द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड shed 4% to $84 in

0: 20 cents per barrel at the time of the last report. Puneet, just a couple of months back or even a month back, you know, we saw how it heated up. You know, the crude price is now coming down to 87, talking about Brent and WTI, to $84. Truly heartening. How do you see this, you know, panning out in the coming days? Of course.
1: So, it's a very volatile commodity because it depends so much more on US President's comments than on actually demand supply right now. It's a very sentimental commodity right now. It always doesn't happen. But so my guess is, however, if you look at, I think this will be a watershed year for crude supplies for India. India is diversifying its supplies. It is changing policies, encouraging alternative fuels. I think it will define the way India imports fuel for the next 10, 20, 30 years. And we have woken up to this fact. My guess is that crude oil prices will head lower going forward, and India will definitely be benefited.
0: Right. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.7% up at 1,50,520 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.9% higher at 2,43,550 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast ke vaida karobar mein sona 1% ki mazbooti se 1,50,359 rupees prati 10 gram ke sath pe raha. Chandi bhi 1.3% ki tezi se 2,42,850 rupees prati kilogram के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. पुनीत, सोने और चांदी में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सोने के प्रति जो ललक है उसको थोड़ा सीमित करिए, और उसके बाद उस पे आयात शुल्क भी बढ़ाया गया, काफी बढ़ाया गया, उसके बावजूद अगर सोने का ये स्तर है और चांदी का ये स्तर है तकरीबन 1.5 लाख और 2.5 लाख के अगर हम आसपास की बात करें, इसमें कितनी आपको मजबूती है, इसमें कितनी चाल अभी नजर आती है?
1: अमित, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सरकार ने कदम उठाए और कर्ब किया इंपोर्ट्स को गोल्ड और सिल्वर के, हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी है इंपोर्ट में, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन गोल्ड और सिल्वर की उसमें काफ़ी कमी आई है और पुराना गोल्ड भी रिसाइकिल ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था. इसी वजह से हम देखेंगे विश्व बाजारों में भी डिमांड कम हुई क्योंकि भारत ने इम्पोर्ट करना कम किया तो प्राइसेज में कमी देखी. मुझे लगता है कि एक मिक्स पैक है, जिनके ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो चाहते हैं थोड़ा दाम बढ़े, लेकिन जो नया गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहते हैं जो अपनी कंजम्पशन के लिए, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा मौका है.
2: काफी तेज बढ़त हुई थी सोने और चांदी की, मतलब अगर चांदी के बाद सोने में भी बहुत तेजी से दौड़ लगाई थी. हाँ, अब कहीं ना कहीं स्थिरता आ रही है.
1: मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में हम काफी स्टेबल नैरो रेंज में मूव देखेंगे, कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट मुझे उम्मीद नहीं है अगले कई, सब मुझसे पूछे, अगले 2-3 वर्षों तक.
2: जी चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद.
1: धन्यवाद.
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों.
0: Thank you, Puneet. Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices and higher. Sensex jumps nearly 1,700 points. Nifty settles above 23,600. India's retail inflation accelerates to 3.93% in May this year. And global crude oil prices decline around 4%. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक

0: शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर

0: जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाते हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ,

0: उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप उनमें पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में

0: रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक सुबह से लेकर रात तक देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त

0: और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें, या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से

0: एक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति के विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी। भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थे। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से

0: तो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री जी की जन

0: कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
0: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
2: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया।
1: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
3: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में DTC ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के द्वारका मोड़ और पापरवत गांव के बीच पायलट आधार पर शुरू किया गया नया रूट 800A सेवा पापरवत गांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। यह मार्ग दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए DTC ने देवी रोड D6606 को शुरू किया है, जो उत्तम नगर टर्मिनल को DDA फ्लैट बकरवाला से जोड़ता है। दिल्ली के यातायात कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए DTC ने रूट नंबर RL79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23B महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवागमन की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों को जोड़ने और विस्तार करने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DROP का शुभारंभ किया। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ BR अंबेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
3: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है, लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
4: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा मिन्ना रखा जाए ताकि

0: एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बनकर के काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिन भर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस के नीस में इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नव प्रवर्तकों, कारोबार जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनः परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर रात का वक्त हो गया है, ठीक 8:11, और ये वक्त कह रहा है कि आप जुड़ जाइए उस महफिल के साथ जिसका नाम है मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। मधुरिमा की महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय रागों और उन पर आधारित गीतों की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग मधुमाद सारंग का एक विशेष स्थान है, जिसे मध्यम सारंग या मध्यमादि सारंग भी कहते हैं। इसका वृंदावनी सारंग के समान चंचल और वर्षा ऋतु से जुड़े हुए एक मधुर राग के रूप में इसकी पहचान है। इसका थार जो है काफ़ी है वृंदावनी सारंग अंग, और स्वर इसका ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और धैवत शुद्ध होते हैं। निषाद कोमल का प्रयोग होता है और आरोह अवरोह में दोनों मध्यम का उपयोग किया जाता है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने

0: लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

राग मधुमाद सारंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें वादी स्वर पंचम पा और संवादी स्वर ऋषभ रे होता है और गाने के समय इसका दोपहर का समय है यानी दिन का दूसरा प्रहर और इसकी जो प्रकृति है वर्षा ऋतु और श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती है।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के।
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। राग पहाड़ी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोक उन्मुख राग है। ये अपनी चंचलता, सरलता और सुकून भरे सुरों के लिए जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी पर आधारित ये गीत।

फिल्म राम और श्याम का ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के साथ ही मधुरिमा की महफिल यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए संजीव को। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर अपडेट के साथ और हर मैच के ताजा हाल के साथ, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के मेगा कार्निवल फीफा विश्व कप के साथ, जिसका आगाज कल मेक्सिको में शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की।
1: विश्व के सबसे बड़े खेल फुटबॉल के सबसे बड़े कार्निवल फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है।

विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल भी नूनेस ने किया। हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के बाद अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी स्ट्राइकर राहुल जिमिनेज ने शानदार गोल दाग कर मेजबान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। मेहमान टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाही चुनौती के लिए रेड कार्ड दिया गया। हालांकि इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांच से भरपूर मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से कोरिया और चेकिया की टीम को गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन दोनों ही टीमें इसे बुनाने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में लाडिस्लाव क्रेजकी ने हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

0: इसके बाद दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 67वें मिनट में हांग इन ब्योम के गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ओ ह्योन ग्यू ने 80वें मिनट में गोल करके दक्षिण कोरिया को मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया ने चेकिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और टीम विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने में सफल रही। विश्व कप में आज सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फुटबॉल के सबसे बड़े मेगा कार्निवल का आगाज हो चुका है और ऐसा ही एक मंच सजने को तैयार है क्रिकेट का इंग्लैंड और वेल्स में, जहां आज से आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इस बार T20 विश्व कप में 12 टीमें भाग लेंगी, जो इस खिताब के लिए अगले 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह फाइनल होगा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का नया चैंपियन कौन बनने जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। सुनिए विश्व कप पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले के साथ ही आज से T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो जाएगा। पहली बार महिला T20 विश्व कप में सबसे अधिक 12 टीम भाग ले रही है। 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट के इतिहास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 6 बार ये खिताब जीता है। इंग्लैंड 2009 में, वेस्टइंडीज 2016 में और मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम 2024 में 1-1 बार ट्रॉफी उठा चुकी है। 2025 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस T20 विश्व कप के प्रबल दावेदारों में शामिल है। अगर भारत को ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान है। इनके अलावा शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, रुचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव भी टीम का हिस्सा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को एजबिस्टन में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और इस मैच को लेकर जितना उत्साह दर्शकों में है उतना ही उत्साह टीमों में भी है। इसके बारे में खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है ना, हमने कभी किसी और मैच में एक्सपीरियंस नहीं करा। इवन दो चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हो और सेमीज भी खेले हो, नेवर फेल्ट दैट। बट आई थिंक क्योंकि शायद बचपन से वो एक एक्सपीरियंस के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम

0: उतना ही स्पेशल मैच होता है, उसको जीतने के बाद उतना ही अच्छा फील होता है, उतना ही रिलैक्स फील होता है।
1: उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच को लेकर क्या कहा ये भी सुनते हैं।
0: आई हैवंट रियली फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट या अगेन टू किक स्टार्ट योर वर्ल्ड कप कैंपेन विद द पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज गुड क्राउड फर्स्ट हैंड इन द फर्स्ट गेम सो दैट विल मोर देन ऑफ योर बैक आई जस्ट फील इट विल जस्ट गेट मेक एवरीवन यूज्ड टू द क्राउड।
1: इसके बाद भारत 17 जून को नीदरलैंड, 21 जून को दक्षिण अफ्रीका, 25 जून को बांग्लादेश और अंतिम ग्रुप मैच में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होने जा रही है। जानते हैं 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत माने जाने वाली सीरीज से भारत को क्या उम्मीदें हैं।
3: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में टीम अब नीली जर्सी में भी अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। 2027 विश्व कप की तैयारी का आगाज मानी जा रही यह सीरीज भारत को कई युवा खिलाड़ियों को आजमाने के नजरिए से बेहद अहम है। भारतीय टीम की बात की जाए तो कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिनको हिटमैन रोहित शर्मा का बखूबी साथ मिल सकता है। विराट कोहली के चोटिल होने के बाद टीम में आए यशस्वी जायसवाल के पास भी खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। विकेट कीपर के रूप में टीम के पास केएल राहुल और ईशान किशन का विकल्प है। निचले मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर टीम को बल्लेबाजी में गहराई देंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के पास स्पिन अटैक में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे का विकल्प है, जबकि टीम की पेस बैटरी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण प्रिंस यादव, गुरनूर ब्राड जैसे युवा नाम है। तो ये दोनों टीमों में अब तक 4 बार आमने सामने हुई है, इनमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 मुकाबला टाई रहा है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है। यहां से शुभमन गिल की मेंस इन ब्लू की नजर इस घरेलू श्रृंखला में जीत दर्ज कर अपनी तैयारियों को एक सकारात्मक शुरुआत देने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
4: It's been special and I've loved it. It's a team that I love and it's so dear to my heart. Well, you know, it's been such a massive part of my life and team sports have pretty special thing, you know, you get a bond with these people around you for such a long period of time and have some really amazing experiences, so they're the sorts of thoughts that come back. The achievements, the good days, the tough days that toughen you up and make you a bit stronger, that's the highlight for me.
5: 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में T20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्धशतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए। विलियमसन ने 110 टेस्ट की 195 पारियों में 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 9,515 रन बनाए। 175 वनडे की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,256 रन बनाए। इसके अलावा 93 T20 की 90 पारियों में 18 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 2,575 रन बनाए हैं। फॉर्मेट के हिसाब से विलियमसन टेस्ट में पहले, T20 में दूसरे और वनडे में न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वो 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। विलियमसन न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तान भी रहे हैं। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। विलियमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कीवी टीम उनकी कप्तानी में 2021 T20 विश्व कप का फाइनल भी खेल चुकी है। वहीं विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2025 में T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की विलियमसन की घोषणा के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
2: जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। सुनते हैं निशानेबाज

0: के इस गोल्डन बॉय पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि थी। पिता नारायण राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और वे ही जसपाल के पहले कोच बने। 1988 में महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके बाद 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राणा के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। जसपाल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 6 पदक अपने नाम किए थे। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 590 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया और भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी को निखारा। उनकी देखरेख में मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद अपने कोच को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: So I was in the team, I was doing good, but I was not happy with my sport, I was not happy in shooting. So I think he was the one to make me have faith in myself again. I would say that he makes me really happy in my sport and I really enjoy shooting again after like 2 years or so.
1: जसपाल राणा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और कोचिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत सरकार तथा खेल जगत की तमाम हस्तियों ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और भारतीय निशानेबाजी में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें sportscan@aiar.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।

0: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास

0: के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों

0: चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीकी राजनयिक को बताई गई। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकानो यामागुची से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अकानो यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। वहीं पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी आज हार करके बाहर हो गई है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सैम मेजबान कनाडा का मुकाबला बोसनिया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में करेगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the DRDO's Defence Research and Development Laboratory of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. According to the Ministry of Defence, Mr. Singh, while addressing the gathering, commended the Missile Systems and Strategic Systems Cluster of DRDO for its pivotal contributions to India's technological excellence, strategic autonomy, and national security. He asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defense research and development ecosystem. The defense minister said systems developed by DRDO, such as Akash and BrahMos, have demonstrated India's capability to compete in the global defense technology ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the center. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving a fair price, West Bengal government is taking the lands from the common people and handing it over to BSF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100

0: kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of three Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su-Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Arun Kumar. मुख्य समाचार। भारत ने अमेरिकी दूतावास उपप्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के कारण हुई त्रासदी में 3 भारतीयों की जान बचाई जा सकती थी। अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और यह बात अमेरिकी राजनयिक को बताई गई। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और मुश्किल की इस घड़ी में संवेदनशील क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालती है। श्री जेसन मीक्स से कहा गया कि भारत की यह गंभीर चिंता अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना सभी आवश्यक उपाय करे ताकि आम नागरिकों की जान न जाए। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया। उधर ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए इसे क्रूर बताया। ईरान ने अमेरिका पर वैश्विक शांति और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग की। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने जलडमरू मध्य के पास दो ईरानी ड्रोन को रोका है। लेबनान में सीमा पार झड़पें और सुरक्षा अभियान जारी है। इसराइल कई मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाए हुए है। समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। लाल सागर और खाड़ी के जल क्षेत्र में व्यवधान ऊर्जा बाजारों के लिए नई चिंताएं पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर आशा व्यक्त करते हुए दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक समझौते पर सहमति बनाने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की सराहना करता है। मंत्रालय ने कहा कि मिस्र क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय और सहयोग से तनाव को कम करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी। अब भारत में 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह ही नहीं बल्कि ये यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। एक रिपोर्ट।
4: सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को दुश्मन को लाभ पहुंचाने और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यूंग को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

0: अदालत ने कहा कि यून ने अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया को उकसाने और मार्शल लॉ लागू करने का आधार तैयार करने के उद्देश्य से ड्रोन अभियानों को मंजूरी दी थी। पूर्व रक्षा खुफिया कमान प्रमुख यो इन ह्यूंग को 15 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। पूर्व ड्रोन संचालन कमान प्रमुख किम योंग डे को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। 12 जून की सुरमई रात, गर्म हवाओं की चादर में लिपटी हुई दिल्ली हर सिंगार की तरह महकती हुई, सर सर कर जिंदगी की मुट्ठी से फिसलती हुई, वक्त की शाखों से दरकते लम्हों से मानो कोई आवाज सी आती है। वो आवाज कहती है, जिंदगी की न टूटे लड़ी। फिल्म क्रांति का ये गीत आपके लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी तो हर पल पुकार पुकार कर यही कह रही है, लेकिन ना जाने दिल को किस किनारे की तलाश है कि ख्वाहिशें उम्र भर बस दौड़ाए रखती हैं और इसी जद्दोजहद में इंसान जीना भूल जाता है। ऐसे में कोई साथी जब अपनी प्यार भरी निगाहों से मन को छूकर जीने का इशारा करता है तो यूं लगता है कि जैसे सब कुछ बदल गया और हम अनायास ही गुनगुना उठते हैं। फिल्म याराना का ये गीत

के मन को छू लेने से मौसम तो बदल जाता है, लेकिन जिंदगी के मौसम में ना तो बहारें टिकती हैं और ना ही खिजाएं। हाँ, मगर जीने वाले दोनों को ही जी भर के जीते हैं। वो कहते हैं कि उठो कि जश्न खिजा हम मनाएं जी भर के, बहार आए गुलिस्ता में कब खुदा जाने। एक और गीत आपके लिए फिल्म आंधी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

आ गई हो नूर आ गया है, वरना जिंदगी बेमायने थी। दरअसल वक्त की बहती धारों पर भागते दौड़ते हम कब आगे बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मगर हर सफर का जो बहाव होता है वो अपने साथ सब कुछ नहीं ले जाता। जिंदगी के कुछ लम्हे रास्ते में ही टूटकर कहीं गिर जाते हैं, और उन्हीं लम्हों के साथ कुछ अधूरी कहानियाँ, कुछ अनकहे जज्बात, कुछ अधूरे सवाल भी पीछे रह जाते हैं। वे वहीं किसी मोड़, किसी गली, किसी पुराने मौसम की तरह ठहरे रहते हैं, चुपचाप हमारा इंतजार करते हुए। और फिर किसी खुशबू में, कभी किसी अनजान चेहरे में, कभी किसी गीत की धुन में वे फिर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वे बस हमारे लौट आने का इंतज़ार कर रही हैं इस गीत की तरह।

देखिए, इश्क की किताब का हर वर्क वफा की दास्तानों से ही नहीं भरा होता, उसमें कहीं शिकवों की स्याही भी होती है, कहीं इंतजार की लंबी रातें आहें भर रही होती हैं, तो कहीं बेवफाई के धुंधले निशान सिसक रहे होते हैं। मोहब्बत की दुनिया के कितने किरदार अपने महबूब की बेरुखी और जुदाई से ही जन्मे हैं। अजीब दस्तूर है ना इश्क का भी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

रूह में मन के दरीचे से कोई झांक गया, जुल्फे एहसास में खुशबू की किरण टांग गया, पाश पाश आंख में आईना हुआ किस लौ का, कौन अंधेरे में माहो कह कशां टांग गया। वो अजनबी जब भी मिलता है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी की तस्वीर बदल गई, और फिर दिल राजेंद्र कुमार और साधना की तरह ये कह उठता है कि हा पाए बाहर आई।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
2: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
2: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह

0: कि सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है,

0: निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की

0: साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजन

0: और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थे। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे आनंद।

श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में ताप के लिए। पहला गीत फिल्म रेशमा और शेरा से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आपने सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। मौसम सुहाना हो और वीकेंड साथ हो तो हर पल में एक अलग ही मिठास खुल जाती है। दिल बेवजह मुस्कुराने लगता है और जिंदगी कुछ और हसीन लगने लगती है।

ओ सनम, बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे। वक्त चाहे कितनी ही करवटें बदले, जिंदगी हमें कितने ही इम्तिहानों से गुजारे, मगर हमारे बीच का अपनापन कभी कम ना हो। हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो और हर शाम तेरी बातों की मिठास मिठल जाए। आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

छोटी छोटी तकरारें रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि अगर उनमें अपनापन और समझ हो तो वही रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। रूठना भी एक एहसास है और मनाना भी एक प्यार भरा इजहार। आखिर मोहब्बत का मजा ही क्या अगर कभी कोई शिकायत ना हो और उसे दूर करने की मीठी सी कोशिश ना हो। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तुम्हारी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद तक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 22 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने सुना चरित्रहीन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जी हाँ, दिल से दिल मिलने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त की किताब में पहले से लिखे हुए लगते हैं। कभी किसी की बात में अपनापन मिलता है, कभी उसकी खामोशी भी अपनी सी लगती है। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना ज्यादा कहे एहसास बढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि इस जुड़ाव के पीछे कोई अनदेखा सा कारण है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में भी खास बन जाते हैं और उनकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगती है।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसमें संगीत दिया। रिश्ता ऐसा हो जिसमें दिखावा ना हो, बस अपनापन हो, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलें और साथ होने का एहसास हर पल दिल को छूता रहे।

दूरियां फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। तुम्हारे आने के बाद जाना कि कुछ लोगों की मौजूदगी जिंदगी को बदल नहीं देती बल्कि उसे एक नया अर्थ दे देती है। अब हर खुशी थोड़ी और खूबसूरत लगती है और हर पल में एक अपनापन सा महसूस होता है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 20 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने। ये मीठी तान आज भी कानों में पड़ते ही दिल को सुकून दे जाती।

जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद हाल पूछने आ गया हो। पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बातों का खजाना है जो हर दौर में दिलों को जोड़ते रहते हैं।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। पुराने गीतों की मीठी तान दिल के किसी कोने को छू जाती है। इनमें शोर नहीं है ना दिखावा है, बस सादगी, एहसास और मोहब्बत की खुशबू। कभी किसी सुर में चांदनी रात उतर आती है तो कभी किसी धुन में बिछड़ने का दर्द। उन गीतों को सुनकर लगता है जैसे बीते हुए लम्हे फिर से मुस्कुरा उठे हों और यादों की महफिल सज गई हो।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने गीत की दर्द भरी पुकार आज भी दिल के तार छेड़ जाती है। इन सुरों में बिछड़ने की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जब कोई पुरानी धुन हवाओं में खुलती है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ खड़े होते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम आंखों के साथ।

अजीब बस शुक्रिया फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:27, वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़ी बहन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हुसन लाल भगत राम ने।

परवरिश फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ताराम वाटकर ने। अपने जज्बात बयान करने का सबसे सीधा और खूबसूरत जरिया ये पुराने गाने हैं। जो बातें कभी लफ्जों में नहीं कही जा सकी उन्हें इन गीतों ने सुरों में ढालकर दिल तक पहुंचा दिया। कभी मोहब्बत का इजहार बनकर, कभी इंतजार की आहट बनकर।

सपेरा एक लुटेरा, रफी की आवाज में आपने गीत सुना। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कितना दर्द छलकता है इन गीतों में, जैसे किसी ने अपने दिल की सारी कसक सुरों में पिरो दी हो। कहीं बिछड़ने का गम है, कहीं अधूरी मोहब्बत की टीस, तो कहीं किसी के इंतजार में गुजरती लंबी रातों की दास्तान।

मतारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बड़ी बड़ी बातों को कितनी आसानी से कह दिया करते हैं ये पुराने गाने। जो बातें कभी किताबों में समझ नहीं आती वो दो चार पंक्तियों में दिल तक उतर जाती है। मोहब्बत हो, इंतजार हो, जुदाई हो या जिंदगी का कोई फलसफा, पुराने गीत बिना शोर किए गहरी बात कह जाते हैं।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। जी हाँ, इन गीतों के अल्फाज सादे होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। यही वजह है कि बरसों बाद भी इन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े सलीके से कह रहा हो। पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की ऐसी जुबान है जो हर दौर में समझी जाती है और जाती रहेगी।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले पुराने गाने जिंदगी की भागदौड़ में एक मीठी सी राहत जैसे लगते हैं। ना इनमें शोर होता है ना बनावटीपन,

0: जबक फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथान संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: The West Bengal government has assured special support for farmers in the agriculture sector in North Bengal with particular emphasis on potato and tea cultivation. State Minister for Agriculture and Agri-Marketing, Rural Development and Panchayati Raj, Dilip Ghosh, said this while addressing the Kanchenjunga Agripreneurs Meet in Siliguri. He said the government will give special attention to the welfare of farmers engaged in potato and tea production in the region. External Affairs Ministry has summoned Shadid Affairs of the United States, Jason Neitz, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Union Cabinet Secretary Dr. T.V. Soominathan has reviewed the preparedness for the NEET re-examination in a meeting yesterday with the Director General, National Testing Agency, Abhishek Singh. He said that the central government, state governments and district administration are working together in close coordination to ensure smooth conduct of the NEET re-examination. Meanwhile, the NTA has extended the examination window by 15 minutes from 118 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on 21st of this month. A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. Former Defense Minister Kim Yong-hyun also received a 30-year sentence for his role in the operation. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Xiuyu in a one-sided quarter-final clash yesterday. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

चोर फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और यीशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुरमई हो, हवाओं में नमी खुली हो और कहीं दूर से कोई मधुर धुन कानों में उतर आए, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर बैठ जाए, दूरियों के सारे फासले मिट जाए और खामोशियों में भी मुलाकातों का एहसास मिलने लगे।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म से आपने गाना सुना। हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन ने इसको लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। जिंदगी की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्यार की छांव साथ हो तो सफर आसान लगने लगता है। अपनापन, विश्वास और स्नेह की इच्छा

सौदागर फिल्म का गाना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत दिया रविंद्र जैन ने। फूलों की महक हो, चांदनी की नरमी हो, या किसी की सादगी में छिपी रौनक, दिल हर उस एहसास की ओर खिंच जाता है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दे।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, जैसे कोई मीठा सा ख्याल हर पल साथ चलता हो। हवा भी कुछ अलग लगती है, मौसम भी सुहाना लगता है और हर छोटी सी बात में एक अनजानी सी खुशी झलकती है। शायद दिल ने किसी खूबसूरत एहसास को अपना लिया है, तभी तो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी तलत अजीज की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जी हाँ, ये साथ कितना प्यारा है, जैसे ठंडी हवा का एक नरम झोंका, जैसे बरसों से बिछड़े किसी गीत की मधुर धुन। तेरे साथ चलते हुए रास्ते आसान लगते हैं और हर पल में एक नई खुशी का एहसास जाग उठता है। जिंदगी की भीड़ में बस यही लगता है कि तेरा साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि यही मेरे लिए दिल का सबसे खूबसूरत सहारा है।

वक्त हुआ है 2:42 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ फिल्म से आपने ये गजल सुनी, जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को एक सुकून भरा ठिकाना मिल गया हो, अचानक सब कुछ थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा हो। हवाएं, मौसम और वो पल जो अब तक बस यूं ही गुजर जाया करते थे, ऐसा लगा जैसे दिल के किसी कोने में छिपी एक पुरानी धुन फिर से बज उठी हो और उसकी मिठास देर तक साथ बनी हुई हो।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मीर तकी मीर ने और इसका संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 2:52 और 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर

0: में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscapes across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and

नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का। जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम हमराही का और मैं हूँ आपके साथ आज रात की हमसफर अर्चना गोयल। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात की ये खामोशी भी

अजीब होती है। दिन में जो बातें सुनाई नहीं देती वो रात के सन्नाटे में धीरे से दिल तक पहुंच जाती हैं। तो आइए आज की इस शांत रात में कुछ बातें करते हैं, कुछ यादों को छुएंगे और कुछ पलों को बस महसूस करेंगे।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म महबूब की मेहंदी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दिल सवाल करता है, रात जवाब देती है। कई लोग इस वक्त अपने घरों में होंगे, कोई नींद की आगोश में, कोई किताबों के साथ तो कोई किसी की यादों के साथ, और कोई सिर्फ खुद के साथ। आज अगर आपके मन में कोई अधूरी बात है तो उसे थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए। ये रात है ना, उसे संभाल लेगी।

दोस्तों, रात हमें सिखाती है कि हर अंधेरा डरावना नहीं होता। कुछ अंधेरे सुकून भी देते हैं, जैसे आसमान के सितारे दिन में नहीं दिखते। वैसे ही कई बार हमारी ताकत भी मुश्किल समय में ही नजर आती है। एक छोटी सी बात हर दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खत्म होकर हमें कुछ सिखा जाए ये जरूरी है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने धरती फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और 57 सेकेंड।

कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका असर वही रह जाता है और रात उन यादों को आवाज़ दे देती है। अगर आपका भी किसी की याद आ रही है तो उसे रोकिए मत। ये यादें ही रिश्तों की एक खूबसूरत भाषा होती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म थी बेटी। और अब कुछ पंक्तियाँ इस खूबसूरत सी रात के लिए। खामोशियों में भी आवाज़ें होती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। रात ने पूछा, क्यों जाग रहे हो? हमने कहा, कुछ सपने अभी बाकी हैं, जो बातें दिन में न कर सके उन्हें रात ने चांद को सौंप दिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म में ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। हर प्यार को शब्द नहीं मिलते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बातें कम एहसास ज़्यादा होते हैं। वो हर दिन हाल पूछना नहीं लेकिन हर दिन याद करना होता है। वो साथ चलना नहीं लेकिन दूर रहकर भी साथ निभाना होता है। और शायद यही सबसे शांत और सबसे गहरी मोहब्बत होती है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में आते हैं लेकिन मंजिल नहीं बनते, फिर भी उनकी जगह कोई नहीं लेता। और अजीब बात यह है कि खामोश मोहब्बत शिकायत नहीं करती, वो बस दुआ बन जाती है। जहाँ भी रहो, खुश रहो, शायद यही सबसे सच्चा रिश्ता होता है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत था फिल्म शोर से। रात और मोहब्बत का रिश्ता पुराना है, दिन में लोग मिलते हैं, रात में यादें। कई लोग इस वक्त शायद किसी की प्रोफाइल नहीं बल्कि उनकी यादें देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर वो साथ होता तो ये रात कुछ और होती। वाकई दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।

धीरे धीरे इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की रात अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, पुरानी बातों को माफ कीजिए और आने वाले कल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर किसी की याद आई है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हर याद किसी खूबसूरत पल का सबूत होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी

0: के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुअंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज PV सिंधु का मुकाबला जापान के विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. External Affairs Ministry has summoned Shadid Affairs of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian marinos in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said he spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio last evening and reiterated India's strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a social media post, Dr. Jayashankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, एक नए दिन की पहली सुबह के साथ आपका स्वागत है। रात की चुप्पी अब धीरे धीरे विदा ले रही है और आसमान पर उजाले की एक पतली रेखा दिखाई देने लगी है। ये समय है ठहर कर अपने भीतर झांकने का और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। आज की भोर की बेला सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और मुस्कुराहट भी लाई है। इस उम्मीद विश्वास में अगर ईश्वर की प्रार्थना भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। सुनते हैं भक्ति से भरा गीत।

कभी महसूस किया है सुबह की हवा कुछ अलग होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। सुबह हमें सिखाती है कि हर दिन नया हो सकता है। पेड़ हर दिन नई हवा देते हैं, सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में नई सोच क्यों ना लाएं।

दोस्तों, कई बार हम जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है। एक कप चाय, खिड़की से आती हवा, घर वालों की मुस्कान और ये एहसास कि हम एक और नया दिन देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, अगर मन में कोई बोझ हो तो सुबह उसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह हमें उसे देखने का नया नज़रिया देती है। आज किसी अपने को एक प्यारी सी बात कहिए, किसी का हाल पूछिए या खुद के लिए 5 मिनट निकालिए। कभी कभी सबसे ज़रूरी मुलाकात खुद से होती है।

दोस्तों, जब सुबह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। दो मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है।

कल कैसा था ये अब कहानी बन चुका है, आज कैसा होगा ये हमारे विचार तय करेंगे। अगर मन में कोई अधूरापन है तो उसे आज पूरा करने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई सपना रुका है तो आज उसे फिर आवाज दीजिए। याद रखिए, सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल गया, वो इसलिए निकलता है कि हम बदल सकें।

दोस्तों, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप खुद से मिले हैं कभी? सुबह का समय यही मौका देता है, कुछ पल अपने साथ बैठिए, सोचिए क्या चीज आपको खुशी देती है, क्या चीज आपको थका देती है। मन की सफाई भी उतनी जरूरी है जितनी घर की। आज का विचार है कि धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस सुबह की ताजगी को अपने साथ रखिए। आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल आपसे फिर मुलाकात होगी भोर सुहाने के अगले सफर में, आपसे कुछ देर बाद 5:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीक

0: की उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में डीआरडीओ की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट पीयूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jayashankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Polo-flagged tanker MT Sedabero off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charter Affairs in New Delhi. The Ministry of External Affairs said it had conveyed its deep concern over the use of lethal force against civilian shipping and stressed that attacks on commercial vessels undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. MEA spokesperson Randhir Jaiswal had earlier said that attacks on merchant vessels carrying Indian crew members must cease immediately. He also called for dialogue and diplomacy to ensure an early return to peace and stability in the region. Defence Minister Rajnath Singh asserted that the exceptional performance of indigenous missile systems during Operation Sindoor is a testimony to the growing strength of India's defence research and development ecosystem. Inaugurating the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex in Hyderabad, the Defence Minister said that the systems developed by DRDO, such as Akash and Brahmos, have demonstrated India's capability to compete in the global defence technology ecosystem. Mr. Singh emphasized that strength is essential for peace and that self-reliance is the most reliable foundation for that strength. Prime Minister Narendra Modi will visit Slovak Republic from tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion US dollars.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सुबह की इस कोमल बेला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम भोर सुहानी के साथ मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शांत समय में अपने सपनों को नया आकार दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सुबह सिर्फ उस समय नहीं होता, एक एहसास होता है, और आज इसी एहसास को महसूस करने के लिए हम और आप साथ हैं।

देखिए ना, बाहर पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, हवा बिना शोर के चल रही है, आसमान बिना रुके रंग बदल रहा है। प्रकृति हर सुबह एक बात सिखाती है कि जीवन को सहज बनाइए। सब कुछ अपने समय पर खिलता है, क्योंकि यही मौसम होता है। निधिया से बहारें जब जागती हैं।

अगर आपके पिछले कुछ दिन कठिनाई में बीते हों तो ये सुबह आपके लिए एक संदेश लाई है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह आती है। इसलिए आज अपने लिए बस एक काम कीजिए, मुस्कुराइए बिना वजह।

वाकई बहुत ही सुंदर गीत, मुस्कुराते रहो और गम छुपाते रहो। दोस्तों, सुबह की ये नरम धूप, ये शांत हवा, एक कप चाय, खिड़की से आती हल्की रोशनी और मन में कोई जल्दी नहीं, सुबह शायद इसी का नाम है। और ये कुछ पल उम्मीद है कि आपका दिन सुंदर बनाएंगे।